0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में सोना मसूरी राइस नानक पनीर पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स HEB हियर एवरीथिंग इज बेटर
3: ये तारा वो तारा हर तारा।
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
6: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में सब संभाल लेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
7: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
8: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
9: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
10: Hello guys, this is me, Kinjal Dave, and you are listening and watching Fun Asia Radio.
11: नेशन का फन स्टेशन, फन एशिया रेडियो।

स्टेशन के फन स्टेशन फनिशर रेडियो पर दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। दोस्तों यू आर लिसनिंग टू द फनिशर नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग नॉनस्टॉप बॉलीवुड एंटरटेनमेंट हियर ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो एंड आल्सो ऑन 104.1 एफएम रेडियो कैरावान। मोर वैरायटी है, मोर चॉइसेस है, मोर फन भी है, ओनली अंडर वन नेटवर्क व्हिच इज फनिशियास नेटवर्क। और दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर के साथी आपकी अपनी अपूर्वा। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ, जुड़े रहते हैं आप भी हमारे साथ हमारी फोन लाइन के जरिए 9722355555 के जरिए। कमाल धमाल के गाने चल रहे हैं यहाँ पर, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के। आपकी पसंद का गाना अगर सुनना चाहते हैं 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। विद दैट लेकर चलती हूँ आपको इस खूबसूरत गाने की तरफ।

ब्यूटीफुल गाना दोस्तों, मीनाक्षी सुंदरेश्वर से सुन रहे थे आप ये गाना। और आनंदी जोशी, जी हाँ आनंदी, एक्चुअली सिंगर का नाम जी हाँ आनंदी जोशी ही है। यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस बिल्कुल सही आनंदी जोशी है इनका नाम। और क्या खूबसूरती से गाया है, दो चार लाइनें ही गाई है बट इतनी खूबसूरती से। और आपको तो पता है कि जब भी कोई अच्छा गाना रेडियो पे बजता है तो उसकी दो लाइनें गुनगुनाए बिना तो मेरा तो रहा ही नहीं जाता भाई। कीड़ा जो है रहता है ना म्यूजिक का मेरे अंदर, वो तो बाहर आ ही जाता है। सो शी सिंग्स इज लाइक दिस।

तेरे, ओ माय गॉड, क्या गाया है! चार ही लाइनें गाई है बस इस गाने में आनंदी जोशी ने, बट इतना इम्पैक्टफुल और इतना ब्यूटीफुल तरीके से गाया है कि क्या ही बताए। अभी अभी जब गाना चल रहा था तो एक कॉलर का कॉल आया और उन्होंने कहा, प्रीति जी है उनका नाम, बहुत ही प्रीति प्रीति बातें कर रही थी वो प्रीति जी प्रीति प्रीति बातें कर रही थी। वो बोल रही थी कि भाई आपने जो दो लाइनें ऐसे जो गुनगुनाती है ना रेडियो पे, वो बहुत ही अच्छी साउंड करती है, लगता है कि लड़की ने गाना सीखा है। तो जी हाँ, आपको बता देती हूँ, तमाम मेरे सुनने वालों को मैं बता देती हूँ कि जी हाँ, मैंने गाना सीखा है और इसीलिए इतनी डेयरिंग करती हूँ यहाँ पर रेडियो पर लाइव आपके लिए गाने की। वो बहुत सारे मेरे ऐसे कॉलर्स हैं, लिसनर्स हैं, जो मुझे कई बार कॉल करते हैं और बोलते हैं कि भाई अपूर्वा जी, थोड़े से कभी कभी आप भी गाने गा दिया करो। तो भाई नेकी और पूछ पूछ ले लिए लिया, आपके लिए गाना अब भी गा दिया और अच्छे अच्छे गाने आपके लिए आने वाले हैं। सो सब्र का फल मीठा होता है, तब तक के लिए ये वाला गाना सुन लीजिए।

बहुत ही खूबसूरत गाना दोस्तों, एक ही विलन रिटर्न से सुन रहे थे आप श्रेया घोषाल की आवाज़ में। इस गाने का जो फीमेल वर्जन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मेल वर्जन से भी ज़्यादा। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ गिव इट अ वॉच, अच्छी मूवी है। एंड स्पेशली फॉर वंस मुझे अर्जुन कपूर इस मूवी में पसंद आए हैं। बट जी हाँ, अच्छी मूवी है। एंड तारा सुतारिया ऑल्सो लव्ड ब्यूटिफुल इन दिस मूवी एंड दिस सॉन्ग वॉज अमेजिंगली फीचर्ड ऑन हर। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द next track.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: कफिंग और स्नीजिंग एट होम, योर एयर डक्ट्स मे बी टू ब्लेम, एंड क्लॉग ड्राई वेंट्स कैन इवन कॉज फायर्स। डक्ट टाइम रिमूव्स डस्ट, पोलन, एलर्जेंस एंड लिंट, गिविंग यू क्लीनर एयर, बेटर हेल्थ, एनर्जी सेविंग्स एंड पीस ऑफ माइंड। Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
5: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahun.
6: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
5: Kaise?
6: Page 3 eatery?
5: No, not an another restaurant again.
6: Dude, it's Page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
5: Matlab great food, great drinks, and great company. Yani ki main.
3: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
7: Main shaadi karungi, to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करो।
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
5: वेट, इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: मैं हीरो।
10: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
11: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉप टावर कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉप टावर कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

मोर म्यूजिक मोर मस्ती और मोर मैजिक के साथ दोस्तों आपका फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। दोस्तों आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा को, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 7:33, बस कुछ चंद मिनटों का सफर बचा है दोस्तों आपका और मेरा, और उस सफर पे जाने से पहले और उस सफर से टाटा बाय बाय लेने से पहले आपके लिए लेकर आने वाली हूँ एक चटपटा सा गिव अवे। उसके पहले आपको बता देती हूँ दैट डायमंड्स आर जस्ट फॉर एवर, दे आर इवन मोर इररेसिस्टिबल ड्यूरिंग द तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड above 18 carat. Celebrate the season with timeless sparkle at Tanishq. Terms and conditions apply. The visit kijiye unka store in Frisco. Giveaway aane wala hai. Stay tuned.

सिरीन, ओ माय गॉड, कल्पना गंधर्व की आवाज़ में दोस्तों सुन रहे थे आप ये गाना फ्रॉम द वेब सीरीज हीरा मंडी। वेल दोस्तों, इंतजार की घड़िया हो चुकी है खत्म। जी हाँ, वादे के मुताबिक लेकर आ गई हूँ आपके लिए गिव अवे, और ये गिव अवे है आपके लिए फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर। आपको गिव अवे में मिल सकता है एक तो ड्राई चिली चिकन, या फिर चिली बेबी कॉर्न, या फिर डायलिसिस बेस्ट बटर चिकन, आर एच सीपीज बेस्ट मक्खन वाला। यू कैन पिकअप दिस गिव अवे फ्रॉम एनी लोकेशन फ्रॉम रिचर्डसन, मैकिनी और एलन। बट जी हाँ, ये गिव अवे आप फ्रिस्को लोकेशन पे जाकर पिकअप नहीं कर सकते, दैट इज द ओनली कंडीशन। रिचर्डसन, मैकिनी या फिर एलन पे, एलन के कोई भी लोकेशन से आप ये गिव अवे जाकर पिक कर सकते हैं, बट फ्रिस्को लोकेशन से नहीं। तो गिव अवे क्या है, गिव अवे के लिए आपके लिए सवाल क्या है दोस्तों, ये तो आपका पूछना बनता है। आपके सामने एक अंतरा मुखड़ा राउंड प्रेश करने वाली हूँ, इस गाने का अंतरा गाने वाली हूँ, उस गाने को पहचान के आपको उसका मुखड़ा गाना है। ठीक है, आप रेडी है? और जो भी मुझे सबसे पहले कॉल करेगा वो जीत जाएगा रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से एक तो ड्राई चिली चिकन, या फिर चिली बेबी कॉर्न, या फिर उनका चिकन मक्खन वाला। हमारा जो नंबर है 9722355555, अपने स्पीड डायल पे रख दीजिए।

तो चलिए दोस्तों, गिव अवे के लिए अंतरा मुखड़ा राउंड जो आपके सामने अंतरा पेश करने वाली हूँ वो कुछ इस प्रकार सा है, गौर से सुनिएगा।

0: स्टूडियो का नंबर 972-235-5555।
1: तुम ऐसे ही कोई भी लड़की नहीं हो, कैसे एक्सप्लेन करूं कि तुम स्पेशल हो?
2: ये भी मैं बताऊं, मैं कैसे स्पेशल हूँ ये मुझे बताना है? तो तुम क्या करोगे? रोल क्या है तुम्हारा?

जैसे, जी हाँ, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। ओ माय गॉड, कितना ब्यूटीफुली गाया है जगजीत सिंह जी ने, बहुत ही अमेजिंग गाना है। और इस सवाल का सबसे पहले जवाब मुझे दिया है बालकृष्ण जी, कामत जी ने, और जीत चुके हैं ये रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से गिव अवे। तालिया बालाजी के लिए। जी हाँ, बल्ले बल्ले कर दिया है बालाजी ने, थैंक यू सो मच। एंड अभी भी मुझे कॉल्स आ रहे हैं, बट भाई विनर तो कोई एक ही हो सकता है, इसलिए मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जल्दी से जल्दी हमारा जो नंबर है स्पीड डायल पे रख दीजिए और हमें कॉल कीजिए। वेल, कोई बात नहीं, हमें हमारा विनर मिल गया है। विद दैट, लेकर चल रही हूँ आपको अगले गाने की तरफ।

ऑलराइट दोस्तों, इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 55 मिनट्स पास्ट 7। यही कहूंगी, वक्त हो गया है मेरे जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आज की शाम साथ निभाने का। दोस्तों, आपके साथ से ये सफर बहुत ही खूबसूरत, सुरीला और सुहाना होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और ये फन एशिया रेडियो का स्टूडियो मेरी हैप्पी प्लेस है। यहाँ पर आकर मैं जितनी हैप्पी हैप्पी होती हूँ, उतना ही हैप्पी हैप्पी आपको बनाने की मेरी इच्छा आकांक्षा और मनोकामना रहती है। With that, live fully, love passionately and laugh loudly. लेती हूँ आप सबसे राय सी थॉट के साथ और करती हूँ नेक्स्ट संडे सेम टाइम सेम शो सेम चैनल ऑन 104.9 FM पर मिलने का वादा। दिस इज योर होस्ट आरजे अपूर्वा साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। हैव अ ग्रेट नाइट अहेड डॉलर्स एंड हैव अ ब्यूटीफुल मंडे मॉर्निंग एंड द रेस्ट ऑफ द वीक अहेड। बाय बाय एंड गुड नाइट।

0: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM।
1: The Dill of Dallas. Heart to Heart. Fun.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: जीनी हुकम मेरी अकल, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
4: मिराज लाउंज चलिए मेरी अकल, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
3: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
4: नो प्रॉब्लम अका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
3: और एंटरटेनमेंट,
4: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में।
3: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
4: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
5: अजी सुनते हो?
6: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
7: दी ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग, एजी फिनटैक्स। सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो।
8: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। Everyone's asking लंच में क्या है?
9: Fear not, we have the perfect solution.
10: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 11:30 AM to 3 PM. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
11: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
10: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
11: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
12: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.

उफ, क्या गाना है, क्या अमेजिंग मेमोरीज एसोसिएटेड है यार इस गाने की. एंड आई एम श्योर जो भी मुझे सुन रहा है, सबके पास एक स्पेसिफिक मेमोरी होगी इस गाने के लिए, बिकॉज इट रिमाइंड्स यू ऑफ योर स्कूल डेज, रिमाइंड्स यू ऑफ योर कॉलेज डेज, रिमाइंड्स यू ऑफ योर होम टाउन, रिमाइंड्स यू ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड लव वंस. यू नो, हम सब सब छोड़ छाड़ के आए हैं इस ब्यूटिफुल कंट्री में फॉर आर करियर, फॉर आर लाइफ, फॉर वट एवर रीजन यू आर हियर, राइट, टू मेक इट बेटर. But yeah, there are some memories that will always be close to your heart. Oof, amazing. Yaar, Dallas वासियों को मैंने एक छोटी सी क्या request बोल दी. लोगों ने झट पट फटाफट request दे दी है, back to back. Amazing 3 calls so far. Please keep them coming. 8 to 9 pop songs and of course 9 to 10 we'll play our blockbuster songs from Hindi movies. Next gana हमें दिव्या ने recommend किया है. And what an amazing song that दिव्या has suggested. Rageshwari करके एक हमारी singer है. And she used to make some amazing songs in the early 2000s. So, unka ek gana hai Duniya. I hope you guys enjoy this as much as I will. So, and of course, ladies and gentlemen, Divya ki tarah aapke paas bhi aise koi achhe pop songs ho, let us know, yaar. 972-235-5555 is the studio ka number. This is the Sunday Pop Station with Prem Joshi.

उफ क्या गाना है यार। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच यार। डायलस वासियों को सिर्फ एक छोटा सा काम क्या दे दो, लोग एकदम दिल पे ले लेते यार। और अमेजिंग अमेजिंग रिक्वेस्ट आ रहे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन कीप एम कमिंग यार, क्योंकि आपका गाना अगर मैं अभी नहीं बजाऊंगा तो ऑब्वियसली 5 मिनट बाद या 6 मिनट बाद बजाऊंगा ही बजाऊंगा। दिस इज अमेजिंग लेडीज एंड जेंटलमैन हु हैव जस्ट जॉइंड अस, दिस इज द संडे पॉप स्टेशन विद प्रेम जोशी। मैं ये शो हर संडे करता हूँ 8 से लेके 10 बजे तक ऑन द एयरवेव्स ऑफ फनीशा, एंड ऑफलाइन For the rest of the week, you can always follow us on Instagram, Facebook, and YouTube at Prem Joshi Podcast. PremJoshi Podcast. Follow us there. We are having some amazing conversations. Next song, hamare very, very special listener, Dhruv, ne recommend kiya hai, who's just 9 year old. Dekho, ladies and gentlemen, hamare millennials aur Gen Zs hame call karte to hame maza aata hi hai. But jab hamara naya generation hai, the Gen Alpha, you know, and all our new kids who come up and listen to our show and recommend us a song, that makes my heart melt. So thank you so much, Dhruv. Dhruv ne mujhe bulaya hai, please play Sapphire from Ed Sheeran. And here's your song, Dhruv.

हेडिंग टुवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, बट प्लीज कहीं जाएगा नहीं क्योंकि आपका और मेरा साथ रहेगा ठीक 10 बजे तक. नेक्स्ट गाना है प्रवीण का, उसके बाद सत्या का. बट लेट अस नो योर जैम 972-235-5555. आई विल सी यू ऑन द अदर साइड.

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
2: Kya matlab?
3: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
3: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: Ab to karna hi padega, madam.
4: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: Ek baar jo maine commitment kar di, to phir sirf Fun Asia hi sununga.
6: Welcome back, ladies and gentlemen. This is the Sunday Pop Station with Prem Joshi. I hope you're having a beautiful late Sunday evening with your friends, family, and loved ones. Katil garmi thi yaar dopahar ko to, but now it has settled down a little bit, so you guys can go outside. I know most of you are doing the back to school runs. Yaar, finally the school week is on. Phat phat bhaag rahe sab. Mujhe yaar wo tare zameen par ka wo gaana yaad aa raha hai. Dunya ka nara, jame raho, manzil ka ishaara. जमेरा वो भाग भागतोड़ वाली जिंदगी चालू हो गई यार वो सब पेरेंट्स की बट ऑफ कोर्स किड्स आर गोना बी बैक टू स्कूल सो वी कैन ऑल गो बैक इन दैट रिदम इट्स बीन एन अमेजिंग समर वेकेशन फॉर मोस्ट ऑफ अस राइट एंड हियर वी गो अभी हमारा पॉप सेगमेंट चल रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन सो लेट अस नो योर जैम कीप इन माइंड द सॉन्ग शुड बी फ्रॉम द एल्बम्स एंड नॉट फ्रॉम द मूवीज नेक्स्ट गाना हमें रेकमेंड किया है प्रवीण ने एंड इट्स वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स कुमार सानू का तेरा मेरा प्यार इट आई कांट इवन इमेजिन दैट दिस सॉन्ग इज लाइक 25 इयर्स ओल्ड नाउ

All right, what an amazing song. एक अमेजिंग सॉन्ग से दूसरे अमेजिंग सॉन्ग पे जा रहे हैं हम. हमको रेकमेंड किया है अशोक ने, तेरे बिन जीना नहीं. इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग बाय बाली ब्रह्म भट्ट. इफ यू डोंट नो दिस सॉन्ग, हैव अ लिसन लेडीज एंड जेंटलमैन.

All right. Welcome back, ladies and gentlemen. This is the Sunday Pop Station with Prem Joshi. I hope you're having a beautiful late Sunday evening with your friends, family, and loved ones. Kafi log restaurants se wapas ghar ja rahe hai, get together se wapas ghar ja rahe hai. Some people are there doing their weekly grocery runs. Ab jo kuch bhi kar rahe hai, ab hume sun rahe, that's the biggest point, and that's the main reason that we are doing our job. So thank you so much, everybody, for tuning in to Fun Asia. I do want to mention that we have an amazing giveaway from Fun Pizza Kitchen. Ek $10 ka gift card hai, jo hum hamare ek listener ko dena chahte hai. To jo bhi hume fat bata dega, jo ye main next gana bajane wala hu, us gane ki movie ka naam aap batana hai aapko mujhe, and who is it picturized on? Very simple questions, okay? Name of the movie and name of the actors. Hero or heroine ka naam bata dena aur movie ka naam bata dena. Jo bhi fatafat mujhe pehle jawab de dega, usko main ek gift card de dunga Fun Pizza Kitchen ki taraf se. Alright? Ye next gaane ka naam hai Aaj Kal Zindagi. Aapko mujhe movie ka naam batana hai aur actors ka naam batana hai. 972-235-5555. ये गाना मैं अभी बजाने वाला हूँ. फिर से नंबर बोल देता हूँ स्टूडियो का. जो भी हमें सबसे पहले सही जवाब देगा उसे अमेजिंग गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा फ्रॉम फन पिज्जा किचन. एंड इफ यू गाइज आर लाइक मी, इफ यू लाइक देसी स्टाइल पिज्जा एंड इफ यू हैवन बीन देर, आई एम गिविंग यू अ रीजन टू गो देर. इट्स अमेजिंग. ओके, 972-235-5555. गाना मैं बजाने वाला हूँ. राइट,

All right, ladies and gentlemen, 15 calls back to back calls आ गए यार. मेरे को लगता है थोड़ा सा question difficult कर देना चाहिए था. I tried to pick up as many calls as I could, but of course, there's only going to be one winner. But घबराइए नहीं, नाराज मत होइए, हताश मत होइए, because we do this every single weekend, right? हम हर संडे को 8 से लेकर 10 बजे तक ये शो करते हैं और उसमें एक गिव अवे होता ही है बिकॉज ऑफ आर अमेजिंग अमेजिंग स्पॉन्सर्स. और इस बार के हमारे स्पॉन्सर है फन पिज्जा किचन, हु हैव launched a brand new Mexican inspired pizza lineup. And these aren't just pizzas, they're fully on flavor fiesta, from the fresh fiesta veggie to the fiera polo loco, the seafood packed senor camarón, and the loaded mucho mucho pork. Every bite is bold, exciting, and made to impress. Head over to Fun Pizza Kitchen and taste the new obsession for yourself. New flavors, new obsession. For more details, visit funpizzakitchen.com. तो हमारे जो इस बार के बॉलीवुड क्विज के विजेता है वो शिल्पा है. शिल्पा ने फटफट मेरे को जवाब दे दिया और दोनों जवाब उन्होंने बराबर से दे दिया और वो इस बार के हमारे विनर है. बट प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू गाइस आर स्टिल कॉलिंग अस फॉर द बॉलीवुड क्विज, डोंट डू दैट. बट यस, इफ यू कॉलिंग अस फॉर रिकमेंडिंग अ सॉन्ग, दैट्स फाइन. कॉल अस एंड लेट अस नो योर जैम एंड वी विल गिव यू अ शाउट आउट एंड प्ले योर सॉन्ग हियर. नेक्स्ट गाना, कहीं तो होगी वो, फ्रॉम अ ब्यूटिफुल मूवी, जाने तू या जाने ना.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डालस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू। And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
3: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
5: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
6: Welcome back, ladies and gentlemen. This is the Sunday Pop Station with Prem Joshi. I hope you're having a beautiful late Sunday evening with your friends, family and loved ones. Most of you folks are heading towards your home, heading towards your final destination, getting ready for the work week, getting ready to back to school week. Yaar, so much stress. Yaar, logo ko bahut stress ho jata hai, yaar, first week of school mein, especially when the kids are so used to not getting up so early. So it's going to be a little bit stressful, but it's all fun. It's all part of enjoying. It's all part of educating yourself, your kids getting educated. It's part of growth, right? Story of our lives. तो अभी आधा घंटा बचा है हमारे शो के लिए. हम हमारे ब्लॉकबस्टर सेगमेंट चल रहा है जहाँ पे हम गाने बजाते हैं फ्रॉम अमेजिंग अमेजिंग मूवीज एंड इट हैज़ टू बी अ सुपर हिट मूवी, राइट? क्यों लोगों को सुलाना नहीं है. लोग अभी गाड़ी चला रहे हैं, घर जा रहे हैं. The last thing that we want is that they are drowsy and sleepy because of our songs. So please make sure it's a blockbuster song from a blockbuster movie. And we will play here, right here on the airwaves of Fun Asia. 972-235-5555 is the studio. 3-4 requests aur le sakta hu before we call it a night. Pehla gana hume recommend kiya hai Safi ne before the show, before the commercial break. So I'm going to play that song for him. Safi, here's your song Lamborghini from the Durbin feat. Ragini.

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Pan Asia
1: Yeah this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Panacea
1: So ruko jara sabar karo
2: Agla gana full vibe badalne wala hai Stay tuned to Panacea

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi, this is Konkona Sen Sharma, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: Up again.
1: Claustrophobia.
2: White House की कैंटीन में स्टोर पहुंच गया. Please check.
3: अच्छा कौन सा वो हाइड्रोजन बम वाला?
4: सर कोर्ट में बात कीजिए.
3: अशरफ सिक्योर लाइन है. प्लीज डोंट इरिटेट मी. नहीं तो अभी वो ट्रिगर दबा दूंगा. हाँ फाइनल चेक्स एवरीवन. शाफ्ट सील करने का वक्त आ गया है. कम ऑन गेट रेडी.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

104.9 FM, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: तेरी तमन।
1: अजी सुनते हो?
2: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
3: दी ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग एजी फिनटैक्स। सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो।
4: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ।

0: खाली सी खिड़की है,
1: कहीं वो अंधेरी सी चिमनी है,
0: कहीं हिलते पेड़ों का जत्था है,
1: कहीं कुछ

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
2: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
3: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
4: Hi, this is Stephanie Hunt. You are listening to Fun Asia Radio.
5: रेशमा इंडस्ट्रीज और सूरज रेसमिन के सारे बैंक अकाउंट सील कर दो। सेल्स टैक्स और एक्साइज की बहुत बड़ी चोरी है, उन डिपार्टमेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दो।
6: फन की फ्रीक्वेंसी बजे दिन रात।

Funny Show Radio, 104.9 FM.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।
2: मेरा यार है रब वर्गा, दिलदार है रब वर्गा।

0: मैं मंदर क्यों जावा मेरा यार खुदा है मैं मस्जिद क्यों जावा मेरा यार खुदा है
1: लो जी।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: फिलहाल
1: अजी सुनते हो
2: अजी नहीं एजी सुनते हैं
3: दी ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग एजी फिनटैक्स सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

Desi Swag. Desi Swag. Bollywood Tag. Fun Asia. Fun Asia.

0: Lights, Mike, Bollywood, Fanasia! Fanasia!
1: Okay.
2: Oh, shit. That

0: ow.
1: Masagali. Ow. Masagali. Ow.
2: Ah, dapat dah.

0: Bringing South Asia closer, more closer. Fun Asia, 104.9 FM.
1: Allah. आपको दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है.

0: अब तेरी बात।
1: मतलब
0: मेरा फैन बनना?
1: तेरा फैन बनने के लिए मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही तेरा फैन हूं।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
7: अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है
8: पनवेल हो या डेलस सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त ओनली ऑन फन एशिया रेडियो

0: ஆஃபீஷியல் கோ.
1: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है
2: ऐसी जगह.
3: अरे झुमका भी मैं भूल गई जाने जा तेरे लिए.
4: थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे. चलिए ना.
3: अरे

0: तो रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: आपके सुहाने सफर का साथी फनीशिया रेडियो।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
0: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Yaar, modern manga sutra dhoonte dhoonte thak gayi hoon.
8: To carrot lane chalo, they now have a store in Frisco and the best collection of modern manga sutras.
7: Seriously? Kaisa collection hai?
8: Minimal, diamond, elegant, everyday styles. You will probably spend more time choosing than shopping.
9: Find the Mangalsutra that matches your style at Carrot Lane, home to the largest collection of modern Mangalsutras. Carrot Lane, now open in Frisco next to Tanishq.
10: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
11: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
12: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
13: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
12: कहाँ?
14: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
1: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
2: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
3: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
2: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
3: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
2: सच में? सब संभालेंगे?
3: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
4: Thank you very much for joining us. Let's get this week started for you. It's Monday, the 10th of August. Sabse pehle tareef us super wale ki jisne duniya banayi, chand sitare banaye, zameen aasman banaye, insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. Usi upar wale ki tareef hai jisne mujhko, aapko और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, याली मदद, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज़ वी गेट स्टार्टेड विद दिस वीक.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव.
3: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-10 99.
4: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
5: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
6: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
7: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
8: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
8: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
7: ये क्या होता
8: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
9: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
10: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन available.
11: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
12: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है.
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
18: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
10: sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
18: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

0: Beautiful track out there, and that, ladies and gentlemen, was the voice of Sunidhi Chauhan, and I do hope you enjoyed it. Now, some messages.
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges. Plus, zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated?
5: Whoa.
6: School ka report card saal mein ek baar aata hai, but business ka report card har mahine. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
8: वेट, इतना सब और प्राइस?
6: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
10: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
9: कहाँ?
11: फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव एंड अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
12: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
13: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
14: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
15: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
14: कैसे?
15: पेज 3 ईटरी?
14: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
15: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
14: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
16: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
17: This is Uday Chopra, and you are listening to Fun Asia Radio.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
3: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्ड वाइड को बुलाते हैं।
4: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
3: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
4: इंडिया तक।
3: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
0: SFL वर्ल्ड वाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
6: हीरे मोती मैं
1: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
7: इस रक्षाबंधन चौक टॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौक टॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
0: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांत, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।
8: हेलो लिसनर्स, माय नेम इज अमेरा जमानी एंड आई एम फ्रॉम सनादा इंक। टुडे आई एम हियर टू टॉक अबाउट अ स्मॉल बिजनेस इंश्योरेंस। स्मॉल बिजनेस ओनर्स, आर यू प्रॉपर्ली कवर्ड? मेनी स्मॉल बिजनेसेस आर अंडर इंश्योर्ड। यू मस्ट गेट एसेंशियल कवरेजेस दैट शुड इंक्लूड general liability, commercial property, workers' compensation, professional liability, cyber liability, EPLI, umbrella insurance. Even a single lawsuit or data breach can create major financial challenges. Me and my team help business owners evaluate risk and build customized coverage plans. We do have package policies that can help you to save money if you have multiple locations. Please do contact me or my team at 972-863-7772. 972-863-7772. Thank you.
9: Ladies and gentlemen, if you're looking for your next favorite hangout, it's time to experience the Mirage Lounge. You'll enjoy premium hookers, delicious bites, handcrafted cocktails, live music and exciting DJ nights all under one roof. The best part is they have a happy hour that runs from Monday through Thursday starting at 11 in the morning till 6 p.m. featuring hookers starting at just $24.99 and shots for only $4.99. Plus, don't miss the fun with Ladies Night and College Night. You can visit the Mirage Lounge on McKinney Ranch Parkway because miracles happen at the Mirage. Now, today's simple question, if you answer it correctly, you can win $20 off with a minimum dine-in bill of $50. I'm going to give it out to two people and both of them will get $20 off with a minimum dine-in bill of $50. Now, the question is, which is the company whose building was imploded in Plano yesterday? And I need the whole name of the company. Not the initials. I need the whole name of the company. Number in the studios is 972-235-5555. And while you all get me those calls and we find a winner, I have this track going out with happy birthday wishes to Sunita Sethi. And it couldn't be more appropriate because it's specially going out to a Sunita on her birthday today.

0: कर लेना।
1: पुश।
2: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो।
3: Hello, namaskar, and thank you very much for tuning into Furniture Radio 104.9 FM, bringing the community together. This is Gapshap Gali with me too. Show shuru karne se pehle ek bahut hi dil se jo hai thank you kehna chahti hu to Ayushi for covering it for me. Vacation pe thi main, chote se vacation pe thi aur us chote se time mein bahut lamba sa maza diya Ayushi ne. I know I also enjoy her show. I'm sure और आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया आयुषी के साथ. एंड दिस इज मी टू फॉर ऑल ऑफ यू अंटिल 12:30 मंडे से फ्राइडे तक मेरा और आपका साथ बना रहता है यहीं पर. कुछ हमारी गपशप होती है, कुछ इधर उधर की बातें होती हैं, कुछ फिल्मों की भी बातें होती हैं और कुछ जिंदगी से जुड़ी बातें भी होती हैं और ऑफकोर्स मौसम से जुड़ी बातें भी होती हैं. लेकिन मौसम का क्या ही अपडेट दूं यार, गर्मी थी, गर्मी है, गर्मी रहेगी आने वाले दिनों में. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

यू नो कभी कभी होता है ना कि एक वर्ड से एक और गाना आपको याद आ जाता है, वैसे ही मुझे कुछ इस गाने के साथ, क्योंकि मोहित चौहान की आवाज़, क्योंकि पीछे पीछे की बात हुई, बस उससे वो गाना याद आया. टेम्पो इज़ गोइंग टू चेंज विद दिस नेक्स्ट ट्रैक, बट आई श्योर यू जिन्हें पसंद है उन्हें पसंद है, और जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए समथिंग टू रियली चेरिश. मोहित चौहान्स वॉइस नेवर नेवर डिसअपॉइंट्स अस, एंड दैट इज़ वॉट यू गेट एट फनीशर रेडियो 104.9 FM. लेडीज एंड जेंटलमैन, बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करते हैं, अगर आपका साथ रहे तो हमेशा. इट इज फन टू डू आर शोज एंड एंजॉय द लिसनरशिप, यू नो द लिसनिंग प्लेजर्स ऑल्सो दैट यू गेट इन टर्म्स ऑफ द चॉइस ऑफ म्यूजिक लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड ऑफ कोर्स द फीडबैक्स ऑल्सो.

अगर आपका साथ रहे तो हमेशा इट इज़ फन टू डू आर शोज एंड एन्जॉय द लिसनरशिप, यू नो, द लिसनिंग प्लेजर्स ऑल्सो दैट यू गेट इन टर्म्स ऑफ द चॉइस ऑफ म्यूजिक, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड ऑफ कोर्स द फीडबैक्स ऑल्सो दैट मैटर इन मेकिंग आर शोज बेटर एंड बेटर. 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो. चलें इस मोहित चौहान के गाने पर. आई होप यू एन्जॉय.

लिसन, मेरी से ना एक जो गलती हुई है उस गलती को ही सुधारना चाहती हूँ. लेकिन गलती ये नहीं कि भाई मोहित चौहान की आवाज़ आपने इस गाने में क्यों नहीं सुनी, क्योंकि ये थी कुणाल गांजावाला की आवाज़. आई एम श्योर मेनी ऑफ यू प्रॉबली वर थिंकिंग कि यार मोहित चौहान कैसे कह दे. लेकिन मोहित चौहान की आवाज़ में सिल्क राउट जो इनका जो बैंड होता था उनकी आवाज़ में भी ये गाना है. आई डोंट नो कौन सा पहले आया. आई वॉन्ट टू थिंक कि बैंड का गाना पहले आया, फिर वो से फिल्म में प्रॉबेबली इनकॉर्पोरेट किया गया. सो दैट इज़ हाउ मोहित चौहान ऑल्सो कम्स इन टू द पिक्चर. लेकिन बाकी जो पिक्चर है, यानी कि हमारा जो ये मंडे मॉर्निंग जो शुरू हुआ है, वो शुरू हुआ है विथ मैनी किड्स रिटर्निंग टू स्कूल्स. नया स्कूल ईयर्स जो स्टार्ट हो रहा है उसके लिए बहुत सारी तहे दिल से हम सारे फर्नीचर की तरफ से जो है आपके बच्चों को हु स्टार्टेड देयर स्कूल टुडे, उनको बहुत सारी विशेस फॉर द न्यू स्कूल ईयर. एंड आई एम श्योर

0: But the parents are excited, the kids are excited, all set to make new friends. कितना मजा आता था वो पहले दिन पे कैचिंग अप की समर में, क्या किया क्या नहीं किया. वैसे तो आजकल फोन्स वगैरह हैं, कनेक्टेड रहने के जरिए कई सारे हैं, तो वो सारी बातें होती रहती हैं. लेकिन इसके अलावा जो वो फर्स्ट हैंड कई ऐसे दोस्त जो ओवर द समर नहीं मिल पाए हैं उतने फ्रीक्वेंटली, उनके साथ भी वो मिलना, उसकी उसका उसका चार्म ही कुछ अलग डे होता है. सो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, विशिंग ऑल ऑफ देम.
1: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ.
2: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस.
1: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
2: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स. यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग.
3: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस. कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क.
4: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
5: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
6: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
5: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust, aur ab wahi trusted care urgent care services के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM. वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजरवे, स्वीट 205, फ्रिस्को.
7: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
7: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
7: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
7: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
13: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
14: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

0: दिल का पता, बस इतना पता कि मैं तो गया
1: काम से. जी हाँ, अरमान मलिक का ये नया गाना कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ. थॉट विल प्ले इट फॉर यू, क्योंकि इस सेगमेंट में कुछ हटके प्ले करने की कोशिश होती है. उसी में एक और गाना जो कि अपार शक्ति खुराना ने गाया है, और साथ में अभिषेक बैनर्जी एंड वरुण शर्मा. दीज आर ऑल वंडरफुल एक्टर्स. एंड अभिषेक बैनर्जी, यू नो दैट ही इज़ ऑल्सो ए कास्टिंग डायरेक्टर एंड काफ़ी सारे अमेजिंग सीरीज एंड मूवीज़ में काम किया है ना इन्होंने. और अपार शक्ति खुराना को हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, एंड वरुण शर्मा को भी, राइट. बस इन तीनों ने मिलकर ना ये गाना गाया है, विच इज़ अबाउट फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट स्पार्कलिंग थिंग इन आर लाइफ विच कीप्स अस गोइंग, राइट. ऐसी एक स्पार्कलिंग चीज़ है जो हर मेमोरी को बहुत ताज़ा बनाती है, बहुत स्पेशल बनाती है, एंड यादगार बनाती है, इफ आई कैन से दैट एज वेल. और ऐसे जो हैं वो है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन प्रेस्टन रोड एंड फ्रिस्को, योर डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी दैट्स एब्सोल्युटली एलिगेंट, टाइमलेस एंड क्राफ्टेड टू शाइन फॉर एवरी मोमेंट दैट यू वांट टू मेक एक्स्ट्रा स्पेशल. ज़रूर याद रखें कि इनका डाउनलोड कर लें आप ऐप, एंड इट इज़ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स मोबाइल ऐप फॉर द लेटेस्ट कलेक्शंस, अपडेट्स एंड मोर डिटेल्स. This is Gapshap Gari with me too.

0: यार याद आ गई अपने दोस्तों की,
1: वो बचपन के दोस्त।
2: अजाने क्यों ये दूरियां बढ़ गईं।
1: कई बार आपको लगता है कि मेरी गलती थी ही नहीं, उसी की गलती थी।
0: सच बताऊं, सही लगता है उसी की ही तो गलती थी
2: काफी हद तक, लेकिन थोड़ी गलती तो आपकी भी थी।
1: तो इसीलिए फोन उठाओ
0: और अभी इसी वक्त उनसे बात करो,
2: वरना कहते रह जाओगे।

ladies and gentlemen, the film name we all are aware of, Chak De India, ladies and gentlemen. और ये गाना क्यों लगाया? क्योंकि अगर आप मेरा शो सुनते हैं तो आप जानते हैं कि इस वक्त यानी कि 11:45 to 12, I bring you songs from films that release in this time frame. आज के दिन ही भाई रिलीज हुआ था, यानी कि 10th of August 2007 में रिलीज हुई थी ये फिल्म जिसका नाम है चक दे इंडिया, जिसमें शाहरुख खान एक्चुअली उन्होंने कबीर खान का ये जो रोल था, इतना आइकॉनिक रोल था उनके करियर का, वो उन्होंने पहले मना कर दिया था करने के लिए, क्योंकि कभी अलविदा ना कहना के साथ उनका जो है कॉन्फ्लिक्ट था, टाइमिंग वगैरह नहीं मिल रहा था, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था. बट देन इट हैपेंड एंड हाउ, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी नो हाउ यू नो वी रिमेंबर दिस फिल्म एंड दैट ग्रैंड रिसेप्शन ऑन बॉक्स ऑफिस ऑल्सो स्पोक volumes about this film. और इसमें जो title track है, चक दे इंडिया का जो title track है, that actually was a very last minute addition, believe it or not. और हम जानते हैं कि ये गाना कितना popular हुआ था, लोगों ने कितना पसंद किया था, right? Talking about which, बनता है कि मैं वो जो गाने की, जो पेट्रियोटिक गाने की बात कर रही हूँ, वो एक इतना एक अपने आप में एक इमोशन लेकर आता है, तो फिर वही इमोशन दोबारा हम जगाते हैं सब मिलके ऑन इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे एट IIT's आनंद बाजार 2026, और अगस्त 15th को ही हम ये सेलिब्रेट करने वाले हैं क्योंकि सैटरडे है. तो आइए अपने फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ पूरी प्लानिंग करके आइए आप 2 PM onwards at the Comerica Center in Frisco, that it is. और जानते हैं ये सब के लिए बिल्कुल फ्री है, और इसीलिए सब आए और अच्छी तादाद में आए, एक ग्रुप बना के आए, झुंड बना के आए, और एक बड़े झुंड के साथ जुड़े, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी फैब एज ऑलवेज. इंडियन खाने से लेकर ग्रैंड परेड तक, फिर कल्चरल परफॉर्मेंसेस से लेकर लाइव म्यूजिक और फिर शॉपिंग तक, it is going to be really grand in every which way that you can think. And this is a celebration that we all are very proud to be part of. And Fanisha is very happy to announce it for all of you. Brought to you by IANT, ladies and gentlemen. So, chalein is ek aur gaane par, ek acche se gaane par, which has that Shah Rukh Khan flair to it. और ये एक ऐसा गाना जिसमें आप शाहरुख खान को तो देखते ही हैं, लेकिन वाइडर शॉट्स में बॉडी डबल को देखते हैं. और ये गाना जो कि पार्ट्स एंड पोर्शन में शूट किया गया क्योंकि गौरी खान वॉज प्रेग्नेंट विथ आर्यन, तो भाई हस्बैंड को तो होना ही पड़ेगा ना. शाहरुख खान वेंट एंड दैट्स व्हेन द बॉडी डबल केम इनटू पिक्चर मोस्ट लिटरली. परदेश जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी, ईयर 1997, ओह सॉरी 8th अगस्त, सॉरी सेम टाइम फ्रेम. दिस इज गपशप गली विद मी टू.

A movie that released on 8th of August 1997, ladies and gentlemen. Sonu Nigam ki awaaz mein ye gaana along with Hema Sardesai and Shankar Mahadevan in the background that you also hear. And yahan se ek aur film pe chalein, jo ki ek aur shandar film and definitely a cult classic as well and a bigger one probably. It is the film Dil Chahata Hai, jo jab release hui thi, to keval metro cities mein and metroplexes mein achhi chali aur baaki circuits mein nahi. Lekin over the time, ye jo film ek cult classic ban chuki hai, iske baare mein kya hi kaha jaye. Itna keh sakti hu ki bhai, ये जो गाना आप सुनने वाले हो इसमें इसमें जो है फराह खान ने कोरियोग्राफ किया है एंड फराह खान टोल्ड हर असिस्टेंट यू नो एंड क्या है यार उनका नाम मैं भूल रही हूँ जो यार जज हैं रियलिटी डांस शोज की वो जज भी हैं एंड शी इज़ द वन हु केम अप विद दैट बर्ड स्टेप इफ़ यू गाइज रिमेंबर वो जो एक आइकॉनिक हुक स्टेप है फॉर दिस नेक्स्ट ट्रैक दैट आई एम गोइंग टू प्ले फ्रॉम दिल चाहता है विच रिलीज्ड ऑन दिस डे 25 साल पहले.

0: 25 साल पहले ये फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन आज भी इतना दिमाग में फ्रेश है ना. आई कैन वॉच इट एन नंबर ऑफ टाइम्स एंड आई एम श्योर दैट इज फॉर यू एज वेल एंड फॉर लीजा एज वेल, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे का नाम आमिर खान के कैरेक्टर के नाम पर रखा था. इतनी वो इम्प्रेस्ड आमिर खान से और उनके कैरेक्टर से थी. आकाश इज लीजा सन्स नेम एंड हाउ पर्सनल स्टोरी दैट इज एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग. एंड गेस वॉट, हर ओल्डर सन्स नेम इज आर्यन, शाहरुख खान के बेटे का नाम. टोटली फिल्मी लीजा, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग एंड टेलिंग अस एंड ऑल्सो टेलिंग मी दैट फराह खान्स असिस्टेंट नेम इज गीता. गीता माँ के उससे नाम से जानी जाती हैं एंड शी केम अप विद दैट हुक स्टेप, दैट बर्ड स्टेप दैट यू सी इन द सॉन्ग दैट आई वॉज प्लेइंग फॉर यू.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: Jeet unki hoti hai, jinki nazar sirf target par hoti hai. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव.
6: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
1: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
7: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
8: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
9: ये तारा वो तारा हर तारा.
8: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
10: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
11: अजी सुनते हो?
12: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
13: ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग, एजी फिनटैक्स. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस. एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेशिया रेडियो.
0: हेलो गाइस, दिस इज मी किंजल दवे एंड यू आर लिसनिंग एंड वाचिंग फनेशिया रेडियो.

खोजने की जरूरत नहीं है, एक रास्ता तो मैं ही बता देती हूँ आप लोगों को, एंड दैट शुड गो टू पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. क्योंकि क्या है ना कि आप जब डॉक्टर विजिट पे जाते हो तो आपके लिए होता है कि वो कितना वक्त आपको दे रहे हैं, कितनी जल्दबाजी कर रहे हैं या कितने इत्मीनान से आपको देख रहे हैं. दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली यू विल गेट हियर. बिल्कुल परफेक्ट एक अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू नो द स्टाफ मेंबर्स की आपको वो पूरी तसल्ली दें दैट यू आर सीकिंग रियली, एंड दैट्स पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. एंड हाल ही में मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस था, आई वेंट टू दिस डॉक्टर एंड विद इन 5 मिनट्स आई वॉज आउट ऑफ दैट प्लेस. सो शुड आई थिंक कि भाई वो डॉक्टर बहुत कमाल के हैं कि मुझे ये लगना चाहिए कि भाई पूरा वक्त नहीं दिया, क्या लगता है आपको? एक्चुअली मुझे यही लगा, मैं दोबारा उन डॉक्टर के पास नहीं जाने वाली हूँ, दैट्स फॉर श्योर. इट वॉज फॉर अ डिफरेंट यू नो थिंग दैट आई वेंट फॉर, एंड दैट वॉज ए क्रॉनिक प्रॉब्लम दैट आई हैव, एंड उसके लिए मैं गई थी और मुझे नहीं लगा अच्छा. और यहाँ पे आपको यही मिलने वाला है, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. यू कैन यू नो हैव दैट कॉन्वर्सेशन विथ योर डॉक्टर, टेल देम इन डिटेल, एंड इन रिटर्न गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट हाउ टू गो फॉरवर्ड. For you, your family, and for the health of our community, Passion Health Primary Care is always ready to help you. और यहाँ पर आपके लिए आपके annual physical से लेकर आपकी चाहे तो अगर किसी को anxiety care की ज़रूरत है, fibro scan for alcohol related liver concerns, vitamin B12 deficiency testing, and more are you know available at Passion Health प्राइमरी केयर. ज़रूर स्केड्यूल करें अपना आज ही अपॉइंटमेंट, 214-666-6259 इज दैट नंबर टू कॉल. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली माही इज डूइंग, टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ. एंड हु इज माही, जिनका आपने अभी भी गाना सुना मर्ज़े दवा, ये जो गाना अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है, एंड आई वॉन्टेड टू प्ले इट फॉर यू क्योंकि माही जो हैं ये हैं हमारे अपने ईशान के बेटे. एंड शान वो जो कि बड़े नामचीन सिंगर है, वी नो हाउ पॉपुलर ही इज़ इन द म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक सर्किट एंड वर्ल्ड ओवर, एंड पीपल नो हिम, लव हिम, नॉट जस्ट फॉर हिज म्यूजिक बट ऑल्सो फॉर हिज स्माइल. या कम ऑन, कुछ कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं ना कि उनका चेहरा ही उनकी पहचान है और इनकी हंसी ही शान की पहचान है, इज़न्ट इट ट्रू? और माही जो कि म्यूजिक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपना फोर्थ जनरेशन ऑफ म्यूजिक जो मुखर्जी फैमिली ने इंडस्ट्री को दिया है, उसके लिए मैंने सोचा कि बनता है कि माही के बारे में कुछ बातचीत करें. और फिर लगा कि कुमार शानू के बेटे का गाना क्यों ना सुनवाऊं. जान कुमार शानू जिन्होंने ये कवर सॉन्ग गाया, ही इज नॉट मेड इन नेम फॉर हिमसेल्फ एज मच, बट आई थिंक ही इज डेफिनेटली वेरी टैलेंटेड टू.

डिडलियू डुडलियू ये सारी चीजें तभी ना दिल से निकलती हैं और तभी से इंजॉय किया जा सकता है अगर आपका जो है टैक्स वगैरह का काम जो है स्मूथली चल रहा हो एंड योर फाइनेंसेस आर ऑल डेल्ट विथ वेल और अगर आपको इसमें ना कन्वीनियंस चाहिए एंड बिल्कुल चाहिए कि यू नो योर फाइनेंसेस आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑल ऑफ दैट एंड यू आर फ्यूचर रेडी तो एजी फिनटैक्स का नाम बिल्कुल आपके दिमाग पे इट शुड बी ऑन द टॉप ऑफ योर हेड और राइट एंड यू मस्ट पास इट टू द अदर्स जो शायद इस वक्त सुन नहीं रहे या शायद जिनको एजी फिनटैक्स के बारे में नहीं पता डू मेक श्योर दैट यू सेंड दैट वर्ड अक्रॉस टू देम ऑल्सो AGFinTax.com इज द वेबसाइट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म

जो शायद इस वक्त सुन नहीं रहे हैं या शायद जिनको एजी फिनटैक्स के बारे में नहीं पता, डू मेक श्योर दैट यू सेंड दैट वर्ड अक्रॉस टू देम. ऑल्सो agfintax.com इज द वेबसाइट, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द US. अगर आप इंडिविजुअली कोई कोई बिजनेस या स्टार्टअप आपने शुरू किया है, एस्टैब्लिश बिजनेस है आपका, इन एनी विच केस दे कैन सर्टनली हेल्प यू. एजी फिनटैक्स, दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टेलर्ड टू योर वेरी स्पेसिफिक नीड्स. बुक कीपिंग हो या पेरोल अकाउंटिंग, बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकॉन्सिलिएशन हो या प्रो एक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज, ऑल ऑफ दैट ऑल अंडर वन रूफ दैट यू गेट एंड मेक योर self really organize on financial matters. agfintax.com is the website. 469-942-9888, and I am very proud to say that this part of my show is brought to you by AG Fintax. भाई प्राउड तो अनु मलिक भी हुए हुए होंगे जब मिलियंस ऑफ व्यूज उनकी बेटी को इस गाने के लिए मिला. अनमोल मलिक, दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

जाने कहाँ छूटे लम्हे, लम्हे कभी छूटते नहीं है पता है। हमारे दिमाग में ऐसे एनकेस्ड हैं ये कि जब चाहें आप उन्हें रिपीट पे याद कर लो, सीरियसली। एंड दैट इज़ व्हाट वी ऑल वांट यू टू रिमेम्बर, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है और क्योंकि फनीशी और चाकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट, वी वॉन्ट टू हियर योर स्टोरीज रियली। आपके वो जो वो लम्हे हैं, आपके जो सिबलिंग्स लम्हे हैं ना, वो जानना चाहते हैं। आप कितने सारे होते हैं यार, मतलब वो फाइट से लेकर वो हंसने तक, हंसने से लेकर रोने तक, रोने से लेकर झगड़े तक, और झगड़े से लेकर सुलह तक, सारी चीज़ें जो इतनी सारी कहानियां हैं सिबलिंग्स के बीच, भाई बहन के बीच, वो सारी कहानियां ही तो सुनना चाहते हैं। उनमें से एक कहानी आप हमारे साथ शेयर करो एंड यू कैन विन अमेजिंग प्राइजेस, यू नो रियली। 2148377147, दैट्स द नंबर, व्हाट्सएप नंबर, जिस पे आपको 1 मिनट का वॉइस नोट आपको भेजना है और आप अपनी कहानी बतानी है। यार आपके लिए एक्साइटिंग डेली प्राइजेस हैं, इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिसोर्ट स्टेज, और ग्रैंड प्राइज पता है क्या है? एक अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटाओ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट। हाउ आई विश आई कुड टेक पार्ट इन दिस वन बिकॉज माई सिस्टर इज इन इंडिया। ये मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए पॉसिबल है, कैन यू इमेजिन वॉट इट इज गोइंग टू बी? आप भाई बहन जो एक साथ एक जगह पे वो सारी चीज़ें आप याद करोगे, कितना मजा आएगा। कहाँ मौका मिलता है ऐसे बैठ के आजकल इस तरह से गप्पे मारने का और वो पुराने दिन याद करने का? यही मौका दे रही है आपको चौकटाओ रक्षाबंधन इवेंट दैट यू कैन बी वेरी मच पार्ट ऑफ। और ये चौकटाओ कैसीनो ड्यूरेंट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर, ये भाई बहन का स्पेशल ये जो गिव अवे है आप लोगों के लिए, ज़रूर याद रखें। हमारे सोशल मीडिया पेज पर, यानी कि फनीशा के सोशल मीडिया पेज पर जाकर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अबाउट टेकिंग पार्ट इन दिस वन। 1 मिनट का वॉइस नोट हमें आप व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा 2148377147 विथ योर ब्यूटिफुल एक्साइटिंग, मतलब क्या झगड़े वाला स्टोरी हो या कुछ भी हो, या मस्ती वाला स्टोरी हो, कुछ भी, जो भी आप बताना चाहें हम सुनने के लिए तैयार हैं। आई हैव सो मैनी विथ माई सिस्टर, सीरियसली। इस बार जब मैं इंडिया जाऊंगी ना, इरादा वही है कि पापा के साथ बैठ के और दीदी और मैं अपने जो बातें करने वाले ना, मज़ा आ जाएगा।

0: चाहती हूँ यहीं पे रुकें और कुछ बात करें तनिष्क के बारे में, जो है फ्रिस्को में. वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट प्लेस. डायमंड्स आर जॉन्स आंट जस्ट फॉर एवर, दे आर इवन मोर इररेजिस्टिबल ड्यूरिंग द तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स. वुडंट यू अग्री अगर मैं कहती हूँ कि आपको 25% ऑफ मिलेगा ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस आपको 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबव 18 कैरेट. तो क्या कहना है आपका, ये है ना बिल्कुल इररेजिस्टिबल सा ऑफर आप लोगों के लिए. तो ज़रूर जाएँ एंड सेलिब्रेट द सीजन विथ टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क. एंड सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई. जो आप चाहें तो उनके वेबसाइट पर जाके पता करें या सीधे इनके शोरूम पे जाके. तनिष्क इज इन फ्रिस्को एंड यू कैन नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू गो एंड बाय दोस स्पार्कल्स फॉर ऑल ऑफ यू एंड योर्स. द तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज ऑन. पता है चेहरे में भी एक ना चमक होती है और कभी ये चमक फीकी पड़ती है और कभी यू नो बिल्कुल चमचमाती है. कहते हैं चेहरा बहुत कुछ बताता है. द फेस इज द मिरर ऑफ माइंड, है ना. ना जी ना, लुक्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. यहाँ पे हम बात करें वो इमोशंस की. इट रिफ्लेक्ट्स ऑन आर फेसेस, राइट. चेहरे से हम बहुत कुछ समझ लेते हैं. हमारी लाइकेबिलिटी फॉर अ पर्सन, गुडनेस ऑफ अ पर्सन, मान लीजिए इंटेंशंस ऑफ अ पर्सन टू अ सर्टन एक्सटेंट. एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लैरिटी, भाई वो तो तब पता चलता है जब हम किसी अच्छे बुरे वक्त में जब वो हमारे साथ आके खड़े होते हैं, राइट. जैसे कि अमिताभ बच्चन ने कहा है कि गिरना भी अच्छा है. जी हाँ, गिरना भी अच्छा है. औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को. अपनों का पता चलता है. जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं. मैंने तो झूठों को अक्सर बस मुस्कुराते हुए देखा है. बहुत ज़्यादा गुस्से की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बाय द वे. हाँ, वहाँ उसके लिए एंगर मैनेजमेंट कोर्स लेना पड़ेगा आपको. लेकिन बाकी यही रही बात कि भाई सीख रहे हैं हम अब. मैं भी सीख रहा हूँ मैं अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर. सुना है चेहरे पे किताबों जैसा सब कुछ लिखा होता है. कितनी सही सी बात है, नहीं. सच्ची खुशी, सच्चा गम, सच्ची लगन या सच्चा कंसर्न चेहरों पे साफ दिखता है. इनफैक्ट जेलसी, गिल्ट, गुस्सा, डिसलाइक, ये सारे इमोशंस भी बिना वर्ड्स के चेहरा और आंखें सब कुछ क्लियरली बता देता है. इसीलिए तो एक्सपीरियंस लोगों का यही कहना है, द फेस इज द मिरर ऑफ द माइंड एंड आईज विदाउट स्पीकिंग कन्फेस द सीक्रेट्स ऑफ हार्ट. वुडंट यू अग्री? आंखें भी होती हैं दिल की जुबान. अब इतना अच्छा सा गाना हो और प्ले ना कर पाऊँ पूरा तो बहुत दुख होगा यार मुझे. और इस रीज़न से ये जो म्यूज़िक जो शुरू हुआ है ना, ये आगे तक चलने वाला है. राइट आफ्टर द ब्रेक वील कम बैक विद दिस वंडरफुल वंडरफुल सॉन्ग. एंड दिस इज़ फनीश रेडियो 104.9 FM, जहाँ पे इंजॉयमेंट ना 100% होता है पूरा पूरा. गपशप गली हमारी कंटिन्यूड रहेगी आफ्टर द ब्रेक एज वेल. मीट मी देन एंड कुछ टॉपिक निकालते हैं गपशप की.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर. विजिट श्रीकृष्णा.com.
4: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
5: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
4: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
5: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
6: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
7: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
8: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्ड वाइड को बुलाते हैं।
7: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
8: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
7: इंडिया तक।
8: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
3: SFL वर्ल्ड वाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
9: क्या मतलब?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
11: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
13: द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर चाइल्ड इज द गिफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
14: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
15: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
14: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
15: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
14: ये क्या होता?
15: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
16: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
3: एंड नाउ एट अ बिगर location just 3 doors down with limited reservation available.
17: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi, warna dulhe ko tata bye bye kar do.
18: Are madam, Kareena wala lehenga aur aapka budget match karega kya?
3: Ab karega, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant sarees, bridal jewelry, men's and kids wear.
19: Wait, itna sab aur price?
3: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
20: Main hero in ho.
21: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.
22: Tracks that put you on the right track.

आजकल ना गट हेल्थ पे बड़ा ध्यान दिया जाता है, बहुत चर्चा होती है, बहुत सारी बातें होती हैं और होनी भी चाहिए। पैशन हेल्थ की तरफ से ये हेल्थ टिप आप लोगों के लिए कि योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ब्रेन दे कम्युनिकेट थ्रू व्हाट साइंटिस्ट कॉल द गट ब्रेन एक्सिस, एंड दिस कनेक्शन इज वन रीजन कि जहाँ पे डाइजेस्टिव हेल्थ, स्ट्रेस और इमोशनल वेलबींग का इन्फ्लुएंस जो है ना एक दूसरे पर पड़ता है यार। इसीलिए अपने गट हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज a tip from Passion Health Primary Care. I thought I'll share it with all of you, and we'll get more tips like this every day for all of you. This is Gupshup Gali with me too. और यहाँ पे ना एक और आपके लिए टिप है, और ये टिप है कि अगर आप वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग या कोई भी स्पेशल पार्टी तैयारी कर रहे हो जिसके लिए आपको एक अच्छी अच्छी जगह की ज़रूरत है, वो पूरा जो होल नाइन यार्ड्स ऑफ यू नो अरेंजिंग एन इवेंट और सेलिब्रेटिंग एन ओकेजन, वो सारी जो चीज़ें जो तैयारी होती ना, आपके लिए जवाब बिल्कुल सीधा है। इट इज वेनेसा इवेंट्स। दे मेक प्लानिंग सिंपल बाय ब्रिंगिंग एवरीथिंग इन वन प्लेस, चाहे वो वेन्यू सिलेक्शन की बात हो या खूबसूरत डेकोर जिसपे कभी कभी प्राण निकल जाते हैं यार कि किस तरह से कुछ नया कुछ अच्छा करें भाई, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिग्नेचर इवेंट्स की, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड डिलिशियस केटरिंग विच इज एक्सक्लूसिवली बाय द रिनाउंड बसेरा ग्रैंड की ये जिम्मेदारी कि आपका खाना A1 होगा। मेन्यू आप चूज कर लो और उसके बाद टेस्ट शानदार होगा। सो यू कैन फोकस ऑन मेकिंग मेमोरीज, बाकी सारी चीज़ों का ख्याल वेनेसा इवेंट्स आपके लिए रखेंगे। आप फॉर द केटरिंग इफ़ यू आर नीडिंग दैट नंबर ऑफ बसेरा ग्रैंड, याद रखें हरी बसेरा को कॉल करें आप 4694428770। वेनेसा इवेंट्स योर सेलिब्रेशन पार्टनर, डू रिमेंबर दैट। और मुझे क्या याद आ गया मैं बताऊँ, बसेरा वो फिल्म जिसमें रेखा, शशि कपूर और राखी, इट हैड अ वेरी सैड सॉर्ट ऑफ एंडिंग, एक मिलैंकॉली जो थी इसमें, जो आई एम श्योर कई लोगों को याद होगा जिन्होंने ये पिक्चर देखी है, ये मूवी देखी है ना। बाकी लोगों के लिए एक गाना ही लगा देते हैं फ्रॉम द फिल्म बसेरा।

0: You are tuned into Gupshup Gali with me too, ladies and gentlemen. जल्दी से आप लोगों के लिए ना एक जो है information share करना चाहती हूँ. And it is to do with Page 3 Eatery, जो मेरा खासा फेवरेट है. एंड जब भी मैं ऐसे कोई अपनी फेवरेट चीज़ की बात करती हूँ ना, मेरे इमोशंस अलग ही छलकते हैं. क्योंकि कबाब्स की बात हो रही है यार, खाने की बात हो रही है, चाट की बात हो रही है यार. फूड इज़ टू गुड देयर. आई रियली लव्ड एंड एन्जॉयड देयर फूड एवरी टाइम दैट आई हैव बीन टू देयर. Page 3 Eatery एट हब 121, रिफ्रेशिंग मॉकटेल से लेके मज़ेदार फ्यूजन खाने तक, वो बोल्ड इंडियन स्ट्राइट स्ट्रीट फूड. ये देखिए, मतलब जबान भी लड़खड़ा रही है अपनी पसंद की चीज बोलते हुए. अब ड्रूल करेगा इंसान तो क्या ही होगा, है ना. तो यस, ब्रंच, लंच, डिनर, डेट नाइट, फूडी मीटअप, एनीथिंग दैट यू आर प्लानिंग ऑन, Page 3 कैन बी सच अ वंडरफुल डेस्टिनेशन. दैट वाइब इज एब्सोल्यूटली फैंटास्टिक. Page 3 ईटरी एट हब 121, लेडीज एंड जेंटलमैन, गो एंड एंजॉय एंड टेल मी व्हाट इज योर फेवरेट देयर. ऑलराइट, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. दिस इज गपशप गली विद मी टू. तो हमारी तो अभी गपशप शुरू ही नहीं हुई है, क्योंकि मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि जब हम छोटे थे. अब दिस कॉन्वर्सेशन वाई आई एम स्टार्टिंग हियर, क्योंकि आज क्या है ना, कई बच्चों की नींद की बेचारों की फिर से बैंड बजने वाली, क्योंकि क्या है ना, समर वेकेशन में सब लेट उठते हैं, आराम से वही 9, 10, 11, 12 भी बजते हैं यार. और ऐसे में जब स्कूल वापस वो सुबह सुबह उठना पड़ता है 6 बजे या 5, 5:30, 6, वट एवर योर किड्स फॉलो, अगर उठना पड़ता है ना, तो बैंड तो बजती है यार. तो उसी के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, नींद के बारे में बात करना चाहती हूँ. कि हम सबको बचपन में ना कुछ सबको सुनने को मिला है, राइट. कुछ ना कुछ ताना सबको अपने पेरेंट्स से या सिबलिंग से सुनने को मिला है कि ये क्या कुंभकर्ण की तरह सोती रहती हो, या मेरे लिए खासा होता था, क्योंकि मैं जब स्कूल से वापस आती थी ना, तो उसके बाद पर्दे, मतलब खाना वाना खा के थोड़ा फ्रेश होके उसके बाद मैं ना एक अच्छी नींद लेती थी. एंड माई फैमिली यूज़ टू से कि ये नींद नहीं ले रही, ये ऐसा लग रहा है कि वो जो भगवान है ना, नींद के भगवान हैं, उनकी पूजा कर रही है. पूरा अंधेरा होना चाहिए, एक लाइट का स्ट्रीक नहीं आना चाहिए, तो मैडम सोएंगी. ये होता था. तो सबको ही कुछ ना कुछ ताने पड़े हैं बचपन में, राइट. बस वही ताने बताइए, आपका जितना इंटरेस्टिंग ताना होगा ना आपके पेरेंट्स के तरफ से नींद को लेकर, उतना इंटरेस्टिंग आपका प्राइज होगा. क्योंकि हमारे तरफ से एक सैन इडली की तरफ से, एक्चुअली मुझे कहना चाहिए, एक तोहफा है आपके लिए, एक गिव अवे है. यस, इट इज दैट गिव अवे टाइम. सो आपके पसंद का डोसा, एनी डोसा ऑफ योर चॉइस, और एक साथ में फिल्टर कॉफी जो आपको जगा भी देगी आपकी नींद से. सो यस, यू कैन विन दैट फ्रॉम सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट. अगर आप मुझे अपना ताना बताते हो, योर पेरेंट्स मस्ट हैव सेड समथिंग व्हेन यू वर यंगर, एंड नींद को लेकर जो हमें ताने पड़ते थे ना, बस उसी को लेके बातें हैं, बताइए. 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो, लेडीज एंड जेंटलमैन. जो भी मेरे पहले कॉलर होंगे ना, उनको ये खास इनाम मिलने वाला है. तो डूब के यादों के भंडार से निकालें वो स्पेशल ताना, ठीक है. By the virtue of being the first caller, you have won for yourself from San Idli Restaurant. जल्दी से बताइए कि आपको क्या ताना मिलता था.
1: भाई, तो मुझे मिलता था ताना कि ये कुंभकर्ण नहीं, ये कुंभकर्णी है, क्योंकि ये जिस तरह सोती है.
0: क्या बात है, क्या बात है, तालियां तालियां तालियां. कितनी क्रिएटिव हमारे लिए निकलते थे पेरेंट्स की तरफ से, और अब हम अपने बच्चों को देते हैं, नहीं. व्हाट्स योर नेम?
1: बिल्कुल, शिवानी.
0: टेल मी अगेन.
1: शिवानी.
0: तो सैन इडली की तरफ से आपको मिलता है ये तोहफा, योर चॉइस ऑफ डोसा एंड वन फिल्टर कॉफी. जा गई हो कि नहीं फिल्टर कॉफी का नाम सुन के?
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू.
0: वंडरफुल, द बेस्ट फिल्टर कॉफी दैट यू विल गेट इन टाउन एट सैन इडली. प्लीज होल्ड द लाइन फॉर मी, सारी डिटेल्स लेती हूँ और वापस आती हूँ आपके पास आफ्टर प्लेइंग दिस. Nice track for all my lovely listeners. क्योंकि चाहती हूँ कि डू के enjoy करें आप Vanisha Radio.

पता है, नींद के बारे में एक लंबी चौड़ी डिस्कशन करना चाहती थी, लेकिन देखिए ना, बातों में बात निकलती गई और मैं पूरा जो है ये टॉपिक कवर नहीं कर पाऊंगी. लेकिन यस, इट इज़ अबाउट नींद. और हमें बचपन में अपने फैमिली से कितने ताने पड़े हैं यार सोने के लिए. और पता नहीं, कल्चर ही कुछ ऐसा है कि जहाँ पे नींद को लेकर बहुत चर्चा रहती है हमारे देसी कल्चर में. लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा सीरियस मुद्दा भी उठाना चाहती हूँ मैं, एंड इट इज़ टू डू विथ स्लीप शेमिंग. एक इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने इसके बारे में चर्चा की, तो लगा कि हाँ, एक्चुअली ये काफ़ी हद तक सही भी है. तो बॉडी शेमिंग, एजिज्म, जॉब शेमिंग, सिंगल शेमिंग, हमने इन सब के बारे में सुना है. और धीरे धीरे सोसाइटी ने क्या है ना कि ये टॉक्सिक चीज़ों को कॉल आउट भी किया है, करेक्ट. लेकिन ये एक ऐसी शेमिंग है जिसको ना देसी कल्चर ने एक तरह से नॉर्मल ही मान लिया है, कि हमें एहसास तक नहीं होता कि हम कब इसका शिकार हो जाते हैं या कब किसका शिकार करते हैं. एंड इट इज टू डू विथ नींद, स्लीप शेमिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन. दैट्स अ न्यू टर्मिनोलॉजी आई केम अक्रॉस. आई थॉट आई मस्ट शेयर इट विथ ऑल ऑफ यू, क्योंकि देसी घरों में ना सोना एक नेचुरल बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं, बल्कि एक कैरेक्टर फ्लॉ माना जाता है. कि अगर आप वीकेंड पे 9 बजे तक सो रहे हैं तो आपको 10 ताने मिल जाएंगे, है ना. कि मतलब केवल मॉम और डैड नहीं, आस पड़ोस के लोग भी मतलब जान जाएंगे कि आप बहुत लेट उठते हैं या ऐसा कुछ. कुंभकर्ण इज प्रैक्टिकली द मिडिल नेम फॉर एवरी देसी मिलेनियल एंड जेंजी किड, है ना. हम सब वो क्लासिक बैकग्राउंड एक स्कोर से आते हैं कि जहाँ पे सर पे सूरज निकल चुका, अभी तक सो रही है. बहुत सारे ताने ऐसे याद आते हैं. बट मॉडर्न जॉब्स और लेट नाइट कोडिंग के बाद इंसान वीकेंड पे रिकवर करेगा कि नहीं, ये बताइए. अगर जॉब डिमांड डिफरेंट हो गई है तो लाइफ लाइफ का ये जो नींद का पैटर्न है वो भी डिफरेंट हो गया है. लोग कितने रात रात तक कई बार काम कर रहे होते हैं, तो वो आपकी बॉडी को उतनी नींद चाहिए. एडल्ट्स के लिए जनरली स्पीकिंग, नॉट एवरीबडी फॉल्स इन द सेम पैक ब्रैकेट ऑफ कॉस्ट, लेकिन 7 से 9 घंटे की नींद सबको चाहिए होती है. लेकिन कुछ लोग हैं जो उससे कम सो के भी फ्रेश फील करते हैं. लेकिन आमतौर पर एन अडल्ट नीड्स दैट काइंड ऑफ स्लीप. तो अगर रात को देर से सो रहे हैं तो ऑब्वियसली सुबह देर से उठेंगे. लेकिन हमारा वर्क कल्चर भी कुछ ऐसा है कि सुबह भी जल्दी होना है, तो वो जो एक स्लीप डेप्रिवेशन होता है ना, इस सब के हम शिकार हैं. तो जब स्लीप शेमिंग बंद होगा ना, तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को वो इजाज़त देंगे कि जितनी नींद चाहिए वो निकालें. स्लीप वेकेशन के बारे में सुना है आपने, कि पहले 2-3 दिन ना अपने वेकेशन पे आप ट्राई वट एवर टाइम दैट यू गोइंग टू स्लीप, और उसके बाद सो, जितना सोना है सो. इफ़ इट मीन्स कि 10 घंटे सो रहे हो, सोने दो, अपनी बॉडी को रिकवर करने दो, विच एक्चुअली मीन्स कि आपकी बॉडी को इतनी नींद की ज़रूरत है. और 3-4 दिन के बाद जो वो जो स्लीप डेट है, जब वो आपका पूरा हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली द बॉडी विल कम डाउन टू द राइट नंबर ऑफ स्लीप hours that your body needs, and that's what your number should be in everyday life. So sleep vacation, consider it, ladies and gentlemen.

You are tuned into Fun Asia Radio 104.9 FM, bringing the community together. ये है गपशप गली with me too. इस गाने में जो आपने अभी भी सुना ना, इसमें दो बहनों का था, संध्या मृदुल एंड रानी मुखर्जी, they played sisters in this one. और उसी से मुझे अपनी बहन का याद आ रहा है कि क्या सितम ढाए हैं मेरी बहन ने मुझ पर, क्या ही कहूँ. कुछ कहना चाहती हूँ क्योंकि चौकटाओ रक्षाबंधन ये जो इवेंट आ रहा है आप लोगों के लिए, ये जो चल रहा है, इट इज वेरी स्पेशली ए रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू. इट इज time to remember those beautiful memories which we have with our siblings. तो मेरी एक memory है कि मेरी दुष्ट बहन जो है, उसने मेरे पर कितने सितम ढाए हैं. उसमें से एक जो incident है मैं बताना चाहती हूँ. She was an avid reader और उसकी एक कहानी की किताब ख़त्म हुई कि उसको दूसरी चाहिए होती थी, और उसके आस पास बाहर काफ़ी network था, मतलब friends का, जो किताबें exchange होती थी. This one time जब मैं बता देती हूँ कि भाई बहुत छोटी थी, इतनी बेवकूफ़ तभी हो सकती हूँ, राइट. और उसने मुझे कहा कि यू नो गो टू दैट फ्रेंड्स हाउस. नहीं, पहले उसने कहा मुझे, एक्चुअली हाँ, लेट मी रिमाइंड, उसने मुझे कहा कि यू नो मीठू एक काम करेगी क्या, नहीं नहीं नहीं तू नहीं कर पाएगी, रहने दे. थोड़ा सा ना ऐसे ही हाइप किया उसने, टू द पॉइंट कि मैंने फाइनली कहा कि नहीं यार तू बता, मैं करके दिखाऊंगी तुझे. और क्या कहा उसने कि जा, वो जो शिखा दीदी है ना उनके पास दौड़ के जा, दो मिनट में वो किताब लेकर आ. और मैं गई यूं भागते हुए, मैंने जो रेस किया है ना, और वो जो किताब लेकर आई हूँ ना, अपना कॉलर अप किया है कि भाई मैंने क्या ही काम कर दिया. दैट्स व्हाट माय सिबलिंग डिड टू मी. कैन यू इमेजिन, इतनी भोली भाली सी मैं, मेरा पूरा फ़ायदा उठाया गया है. दुष्ट तो भाई मैं भी थी, जाके कंप्लेन करती थी अपने पेरेंट्स को जब भी कुछ वो दुष्टता करती थी, डांट भी पड़ती थी उसको. लेकिन हाँ, हम दोनों भाई बहनों में ना एक कोट था, मतलब बहनों में हमारे ये कोट था कि जो झगड़ा करते थे, मम्मी यूज टू से कि भाई आपस में रिजॉल्व करो, तुम दोनों ही एक से बढ़कर एक हो, तो मेरे पास अपनी ये सारी चीज़ें लेकर मत आओ, एंड ऑल ऑफ दैट. सो यस, यू नो, वेरी फॉन्डली रिमेंबरिंग माय सिबलिंग, माय सिस्टर, माय स्ट्रेंथ, माय पिलर, लेडीज एंड जेंटलमैन. और आप सबको ये मौका मिलता है कि आप अपनी कहानी, 1 minute story that you can share with all of us. WhatsApp number है 2148377147, and this is the Raksha Bandhan Fun Asia Radio and Choctaw Casino and Resort Durand. Everything is coming together for this beautiful, beautiful memory that you can create for yourself, and in return you can win prizes, ladies and gentlemen. और इसीलिए daily जो exciting prizes हैं उनमें से कुछ मैं बता देती हूँ. डाइनिंग एक्सपीरियंसेस से लेकर एंटरटेनमेंट, रिसोर्ट स्टेज एंड ग्रैंड प्राइज. पता है क्या है ग्रैंड प्राइज? है एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटाओ कैसीनो एंड रिसोर्ट इन ड्यूरैंड. कितनी कमाल की बात है. बस मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, एंड डेफिनेटली गो टू आवर सोशल मीडिया पेजेस टू फाइंड आउट अबाउट दिस कॉन्टेस्ट and much more, ladies and gentlemen. And it is for all of you to know ki ye jo kahaniyan hai na, ye hamare memories mein itne acche se encompassed hai ki aap jis din chahe use nikal ke enjoy kare. Maine kar liya. Hopefully you enjoyed my story as well. Ek aur siblings gana that I'm very very fond of. Hum to aise hain bhaiya. And that is what exactly I'm going to play for all of you right here.

0: भागो भागो कोई गधा अपने पल्ले बांध न जाए, भाग झिंकी भाग। वहाँ मुफ्त की रबड़ी खाए, देखो अपने रज्जू ताओ।
1: मक्कल घुमा के मक्खी उड़ाए, रतन और ताऊ दोनों बिकाओ।
0: छुटकी, भगवान करे वो सुखी रहे और उन दोनों का साया भी हमसे दूर रहे।
1: हर वक्त टोकती रहती है, तू मेरी बहनी भाई है।

This is Gupshup Gali with me too, ladies and gentlemen. बहनों का ये गाना मुझे बेहद पसंद है. Hopefully you enjoyed it as well. थोड़ी देर पहले बहन का मैं जो एक स्टोरी शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ, और मैंने कहा मेरी दुष्ट बहन, मैंने बड़े प्यार से ये कहा. मेरी एक लिसनर है, बहुत प्यारी लिसनर है, उन्होंने कहा कि बहन को या सिबलिंग को कभी दुष्ट नहीं बोलना चाहिए, दिली में माफ़ी मांग लो. लेकिन पता है, ये बहुत प्यार से मैं उससे कहती कि यार तू बड़ी दुष्ट है. मतलब वो जो मेरे लिए है ना, मैं जानती हूँ, शी इज़ माई वर्ल्ड. So once again, Gupshup Gali with me too continues here. And ladies and gentlemen, stop whatever you are doing. अगर आपको लगता है कि आपका ये जो वीक है बहुत chaotic नोट पे स्टार्ट हुआ है, इफ़ यू वेटिंग फॉर अ फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, योर आंसर्स आर कमिंग अप नेक्स्ट, बिकॉज पंडित ईश्वर जी इज विथ अस राइट नाउ, राइट हियर. टू गेट इन टच विथ हिम, कॉल हिम एट 9455270897. योर अल्टीमेट गाइड टू फाइंडिंग आउट योर present and your future, figuring out, let's say. And for that, let's welcome him on the airwaves of Fun Asia Radio 104.9 FM. Let's see how

0: जाने से पहले आई डू वॉन्ट टू शेयर अबाउट यू नो एनी इंसिडेंट रिगार्डिंग एन एक्सीडेंट दैट यू हैड. और ये वो वक्त होता है कि कई बार हम अपने आप को हील करने में और सिचुएशन में ज़्यादा डूबने में बिलीव नहीं करते, क्योंकि कॉम्पनसेशन अगर अगले से चाहिए, अगली पार्टी से आपको चाहिए, वो निकलवाना यार कई बार बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है. एंड वी जस्ट लेट इट गो. डोंट लेट इट गो. इफ यू नीड दैट हेल्प, लीगल हेल्प, आप अटर्नी ओमर ख्वाजा के साथ कनेक्ट करें. ही विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. इंश्योरेंस कंपनीज के पिछड़े में नहीं पड़े आप. वो डील करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है. गिव देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे विल मेक श्योर दैट यू गेट द डिजर्विंग कॉम्पनसेशन. और आपको कुछ नहीं पे करना पड़ता है जब तक ये अपना केस जीत ना जाए. तो ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है. फ्री कंसल्टेशन के लिए जरूर कॉल करें इन्हें 4693005046. attorneyomar.com इज द वेबसाइट. एंड बिफोर आई लीव भाई, कल सुबह ठीक 8 बजे प्लेनों के हिस्टोरिक इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम यानी कि EDS कैंपस को ऑफिशियली इम्प्लोड कर दिया गया. एंड लोकल अथॉरिटीज ने रेसिडेंट्स और बिजनेस ओनर्स को पहले ही इसके बारे में सारा कुछ डिटेल दे के रखा था. एंड द साइट डिमोलिशन पेव्स द वे फॉर AT&T टू बिल्ड इट्स न्यू कॉर्पोरेट कैंपस, ए $1.3 billion AT&T ग्लोबल हेडक्वार्टर्स राइट नियर लेगेसी ड्राइव एंड पार्कवुड बुलेवार्ड. आई थॉट आई विल क्विकली शेयर विथ ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये सेगमेंट होता है द फ्रेश ड्रॉप, ताजा एंड न्यू. विल कंटिन्यू लेडीज विथ ऑल द इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, क्योंकि स्निग्धा आ चुकी है.
1: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ.
2: तो कैरेट लेन चलो. दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस.
1: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
2: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स. यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग.
3: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस. कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क.
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन.
5: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. 1 हफ्ता 10 दिन अगले ट्यूसडे.
6: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
5: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
3: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
12: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
13: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
12: कैसे?
13: पेज 3 ईटरी?
12: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
13: ड्यूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट every craving, every appetite.
12: मतलब great food, great drinks and great company, यानी कि मैं.
3: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat. ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338 myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री NMLS 2025289 लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सस। ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल। इक्वल हाउसिंग लेंडर।
14: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम। Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
15: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Phoenicia Radio.

हेलो, क्या हाल है मेरे मंडे वॉरियर्स। अगर आप इसी वक्त ऑफिस में हो, काम के बीच में रेडियो चला रखा है, तो ऑनेस्टली आई सी यू। मंडे को काम करना एक चीज है, लेकिन मंडे को काम करने का मन करना वो अलग लेवल की अचीवमेंट है। आप सुन रहे हो आफ्टरनून अड्डा विथ मी स्निग्धा, ओनली ऑन फनीशा 104.9 FM पर। आज का अड्डा थोड़ा रिलेटेबल होने वाली है। मंडे ब्लूज, अडल्टिंग के वो लेसन जो किसी ने नहीं सिखाए, पैसे आते ही कहाँ चले जाते हैं। और हाँ, थोड़ी देर बाद फुल बॉलीवुड का तड़का भी है। मूवी, सेलिब्रिटी बस, गॉसिप, जो कुछ चल रहा है उसकी बात करेंगे। लेकिन मुझे पहले बताओ, आपकी मंडे सर्वाइवल हैक क्या है? चाय, कॉफी, म्यूजिक, लंच, या बस वो एटीट्यूड किसी तरह 5 बजे तक पहुंच जाओ? लेट मी नो गाइज, लेट स्टार्ट। चलो जी, मंडे को थोड़ा लेस मंडे बना ही देते हैं। स्टे विथ मी।

इट्स अ मंडे आफ्टरनून, मंडे सर्वाइवल मोड, तो एनर्जी लगेगी ऊपर ही, बिकॉज वी हैव टू कीप आवर एनर्जी गोइंग ऑन, क्योंकि मंडे के दिन ही हम फीका नहीं पड़ सकते. मंडे मॉर्निंग के बाद वो एक मोमेंट आता है जब आप लैपटॉप खोल के स्क्रीन को देखते हो और दिमाग में बस एक ही थॉट, मैं क्यों हूँ यहाँ. फिर याद आता है हमारी बिल्स, EMI, रेंट, लाइफ, और फिर हम क्वाइटली काम पे लग जाते हैं. लेकिन हर किसी का मंडे सर्वाइव करने का अपना ही जुगाड़ होता है. किसी को सुबह चाय चाहिए, किसी को स्टारबक्स की कॉफ़ी, किसी को हेडफोन्स लगा के दुनिया से डिस्कनेक्ट होनी है, किसी को लंच ही मोटिवेशन है क्योंकि ऑफिस में गॉसिप चलती है, और लोगों का मंडे सर्वाइवल और भी बहुत कुछ होते हैं. मेरी मंडे सर्वाइवल इज़ नथिंग बट आफ्टरनून अड्डा में आना और आपके साथ मंडे आफ्टरनून चलाना. व्हाट इज योर मंडे सर्वाइवल हैक्स एंड हाउ डू यू गेट थ्रू द वीक? लेट मी नो.

सौदा खरा करा, और इसी एनर्जी के साथ आप बात करते एक स्मार्ट फाइनेंशियल सौदे की। सो अगर आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, या अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्मार्ट डायरेक्शन में देना चाहते हैं, तो इट इज़ माई टाइम इक्विटी इज़ हियर टू हेल्प यू। CPA सुधीर पाई लीडरशिप में माई टाइम इक्विटी ऑफर्स पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल इस्टेट अपॉर्चुनिटीज और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स भी। ऑल आर अलाइंड विथ योर फाइनेंशियल गोल्स। तो फाइनेंशियल डिसीजंस में भी रखिए ही एक ही मंत्रा, सौदा करा स्ट्रैटेजी करी। Visit mytimeequity.com and call 469-702-1272 today. My Time Equity, your goals, your strategy for your financial future.

That was Chamak Chalo from the movie Ravan. Ravan में तो करीना कपूर और उनकी बेटी को बचाने के लिए रावण है दिस शाहरुख खान. हमारे डैलस में एक्सीडेंट सेकंड्स में हो सकती है लेकिन रिकवरी में मंथ्स लग सकते हैं. अगर आपको कोई अपना कार एक्सीडेंट, ट्रक एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल का शिकार हुए है तो लीगल बैटल आपके लिए आप अकेले मत लड़िए. अटॉर्नी उमर ख्वाजा आपके लिए फाइट करेंगे. आर रावण फिर डैलस अटॉर्नी उमर ख्वाजा कॉम्पनसेशन के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी रिकवरी पर फोकस करने के लिए और फी सिर्फ केस जीतने के बाद ही. तो कॉल कीजिए 4693005046 या विजिट attorney.umar फॉर योर फ्री कंसल्टेशन. अटॉर्नी उमर ख्वाजा आप हीलिंग पर फोकस कीजिए, लीगल फाइट तो वो आपके लिए संभाल लेंगे.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
3: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
4: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
5: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
6: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
5: नहीं.
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
5: नहीं.
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
5: वो भी नहीं.
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
7: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी.
8: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
9: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
10: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
7: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath naye Kaiser Way location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, हार्ट टेस्टिंग और मेथ स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनोक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 एम टू 8 पीएम. वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजर वे, स्वीट 205, फ्रिस्को.
11: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
12: लिया.
11: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
12: नहीं आया.
11: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनाडा इंक. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
13: Visit www.senadainc.com today.
14: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
13: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
15: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
16: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
12: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
16: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
12: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

This is Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, on Phanisha 104.9 FM par. Let's talk about Adulting 101, kyunki aaj Monday hai. You know what nobody prepared us for? That is nothing but adulting. School mein pata nahi kya kya padha diye, algebra, trigonometry, photosynthesis, Shakespeare kaun tha, वो भी बता दिए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि दिन में आप गूगल क्या क्या कर सकते हैं, लाइक क्या क्या हम गूगल करते हैं नॉर्मली, लाइक वॉशिंग मशीन को क्लीन कैसे करते हैं, किसी ने ये नहीं बताया, इलेक्ट्रिसिटी बिल कब भरना है, इंश्योरेंस कब रिन्यू करवाना है, टैक्स का क्या करना है, और घर में कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो फैमिली ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स, मेरी फैमिली स्निग्धा ज़रा देखना क्या हुआ, अरे मुझे क्या पता, मैं भी तो YouTube ट्यूटोरियल ही देखूंगी. और अडल्टिंग का सबसे फनी पार्ट, एक एज के बाद आपको जेन्युइनली एक्साइटमेंट होने लगती है कि व्हेन यू गोना गेट अ गुड डील ऑन ग्रॉसरीज. मोर देन एनीथिंग एल्स हम बोलते हैं कि ओ आज पटेल में ऑफर चल रहा है, ओ आज इंडिया बाजार में ऑफर चल रहा है, ओ कहीं पर नया खुल गया, ये घर के लिए कोई यूजफुल चीज़ मिल ही जाए हमें, बट उससे हम खुश हो जाते हैं. हम कब इतने बड़े हो गए कि सो बताओ मुझे अडल्टिंग की वो कौन सी चीज़ है जो आपको खुद से सीखी बिकॉज नोबडी टॉट यू. मुझे लगता है काफ़ी लोग बोलेंगे सब कुछ, बिकॉज इफ आई हैव टू टेल, यूएस आने के बाद मैं तो सब कुछ सीख गई हूँ. मैं पापा को कॉल करके बोलती हूँ यार अच्छा और मैं इंडिया में ही रहती, टाइम पे खाना, टाइम पे कपड़े, आयरन प्रेस्ड, एवरीथिंग यहाँ पे खुद करना पड़ता है, सब खुद ही करना पड़ता है. दैट इज़ नथिंग बट अडल्टिंग 101. सो वेलकम टू द अडल्टिंग फेज when you move to abroad.

शाही जोड़ा पहन के तो दुल्हन है, शादी का गाना सुन लिया, अब भाई क्या करूं मैं। शादी का गाना तो मुझे बस एक ही चीज़ आती है, शादी का खाना। खाने का टाइम भी हो गया है, इट्स लंच टाइम डैलस। और लंच की बात हो तो एक नाम है जो इंडिया की जेनरेशंस को याद है, दैट इज़ होको। अब उनकी लेजेंडरी चना पूरी, सैंडविचेस, करीज और फैन फेवरेट होको कोल्ड कोको का टेस्ट एंजॉय कीजिए राइट हियर इन डैलस। नेक्स्ट इंडिया ट्रिप का वेट क्यों करें, विजिट होको 2693 प्रेस्टन रोड सूथ 1000 इन फ्रिस्को। फुल मेन्यू के लिए विजिट होको डॉट यू एस डॉट एंड होको। कम हंग्री एंड लीव विद अ टेस्ट ऑफ इंडिया, और क्या चाहिए, देयर इज टेस्ट ऑफ इंडिया, चले जाइए आज ही, इट्स इन फ्रिस्को।

वाह, स्पैनिश वाइब्स तो आ ही गए हैं, तो क्यों ना वाइब्स को थोड़ा मैक्सिकन फ्लेवर भी दे दिया जाए। इट्स लंच टाइम एंड फन पिज्जा किचन हैज लॉन्च्ड अ न्यू ब्रांड न्यू मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप। ट्राई द फ्रेश फिएस्टा वेजी फ्यूरी पोलो लोको सी फूड लोडेड सेन्योर कैमरॉन और लोडेड मूचो माचो पोर्क। बोल्ड फ्लेवर्स, फुल ऑन टेस्ट, एक बाइट एंड यूल बी सेइंग ओले। हेड ओवर टू फन Pizza Kitchen and try that new obsession. For more details, visit funpizzakitchen.com. Fun Pizza Kitchen, new flavors and new obsessions. So, Fun Pizza ke baare mein baat hi kar rahe, I even have a giveaway of Fun Pizza Kitchen. To giveaway ke liye to question to mujhe puchna hi padega. The question is, main agla gaana jo chalane wali hu, usme there are set of heroines in that movie is Kalank. ध्यान से, बहुत सारे heroines हैं, तो मुझे ध्यान से बताइए कौन कौन है वो heroines, and if you are right you get a $10 gift card from Fun Pizza Kitchen. Come on, phones उठाइए and call me at 972-235-5555 पर।

this was the movie कलंक. कलंक में देर आर फाइव हीरोइंस, तो आप अच्छे से सोचिए. देर आर थ्री मेन हीरोइंस एंड टू स्पेशल सॉन्ग्स के लिए हीरोइंस, तो अच्छे से सोचिए और कॉल कीजिए फॉर द फन पिज्जा किचन गिव अवे. गाइज आई हैव कॉल्स बट उसमें गलत आंसर दिया है, यू आर मिसिंग आउट ऑन सम हीरोइंस, तो सोचो सोचो एंड कॉल मी फॉर द फन पिज्जा किचन गिव अवे.

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
1: Kya matlab?
2: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
2: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: Ab to karna hi padega, madam.
3: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
6: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
7: भूख लगी
8: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
9: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
10: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
11: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
12: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
13: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
12: सच में? सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
11: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: listening to Phaneesia Radio. Afternoon Adda with me, RJ Snigdha on Phaneesia. So now it's time for our Ura Death Relief segment. Today we have pleasure of having Ura Death Relief Organization representative, Mr. Aman. He's going to tell us about Ura Death Relief programs. Hi, Mr. Aman. Thank you for joining us on 104.9 FM Phaneesia.
1: Phaneesia sunne wale sabhi listeners ko Aman aur Ura ki taraf se namaskar. Thank you. And yes, 10 tarikh ho gayi, August ka mahina, aur ye saal फटाफट हाथ से निकलता जा रहा है. तो लेकिन वो गलती जो हम हर महीने दर महीने या साल भर साल करते आ रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड की आंखें बंद करके मिनिमम पेमेंट भरते जा रहे हैं, उससे आप भी जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड उतरता नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड वाले आपसे चार्ज करते हैं 40% इंटरेस्ट. तो 40%, 28, 29, 30% इंटरेस्ट पे करके आपका क्रेडिट कार्ड उतरेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मनी वेस्ट है. और उससे दूसरा नुकसान, आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो रहा है, क्योंकि जब इनकम जो डेट की इनकम से ज्यादा बढ़ जाती है मिकदार, तो स्कोर नीचे कर दिया जाता है. तो अगर आपका डेट टू इनकम रेशियो हाई है और क्रेडिट कार्ड उतर नहीं रहे हैं, तो जस्ट कॉल उरा. उरा आपके इन क्रेडिट कार्ड का आधे से ज्यादा कर्जा माफ करवा देगा, जो आपने खर्चे हैं लेकिन उसको माफ करवा दिया जाएगा. आधा जो बचेगा उसकी भी इंटरेस्ट फ्री किस्तें बना दी जाएंगी, यानी आपका इंटरेस्ट भी जीरो हो जाएगा, प्रिंसिपल भी रिड्यूस हो जाएगा और डेट भी जल्दी उतर जाएगा. डेट जल्दी उतरेगा तो स्कोर जल्दी इंप्रूव होगा, और उसके साथ साथ आपको दूसरे लोन्स इजीली अवेलेबल होंगे. अगर आपने घर लेने के बारे में सोच रहे हों, गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हों, जब तक आपका क्रेडिट कार्ड का डेट लोअर नहीं होता, उतरता नहीं, तब तक आपको घर का लोन, गाड़ी का लोन आराम से नहीं मिलता. तो जस्ट गिव अस अ कॉल. और इसके साथ साथ अगर आपका कोई पर्सनल क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन भी है, क्रेडिट कार्ड का तो मैंने बोल दिया, पर्सनल लोन्स भी हैं, या गाड़ी जो रीपोजेस हो गई है, या गाड़ी जो टोटल हो गई है, उसको भी अगर नेगोशिएट करके माफ करवाना चाहते हैं, तो जस्ट गिव अस अ कॉल. हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914. 6 वरी 8 ही है, बाकी 99 14 याद रखो. या फिर अगर आप मुझसे, अपने दोस्त अमन से सीधी बात करना चाहते हैं, जस्ट कॉल मी 916-776-3555, 916-776-3555, again 916-776-3555. और हमारी वेबसाइट है www.ura.org. नंबर ना भी लिख पाए हों तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, फाइनेंशिया है ना, कॉल कीजिए अच्छे से गाने की फरमाइश के साथ, अपने दोस्त अमन का नंबर ले लीजिए, लेकिन मिनिमम पेमेंट करने से पहले एक बार सोच लीजिए, आधा माफ हो जाएगा.
0: थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू.

शुभारंभ, रक्षाबंधन आ रही है तो भाई बहन की यादों का टाइम भी आ गया है। इस रक्षाबंधन फनीशा रेडियो और चौकटो कैसीनो एंड रिसोर्ट दुरंत के साथ शेयर कीजिए अपनी ब्रदर या सिस्टर के साथ एक सबसे अनफॉरगेटेबल 1 मिनट मेमोरी। बस हमें कॉल कीजिए, अपनी स्टोरी ऑन एयर शेयर कीजिए और जीतिए एक्साइटिंग डेली प्राइजेस, डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिसोर्ट स्टेज और बहुत कुछ। और सबसे बड़ा प्राइज सिबलिंग रियूनियन वीकेंड एट चौकटो कैसीनो एंड रिसोर्ट दुरंत। तो भाई बहन की कोई फनी, इमोशनल या क्रेजी याद है तो कॉल नाउ एंड शेयर इट विद फनीशा। फनीशा रेडियो और चौकटो इस रक्षाबंधन मेमोरीज को बनाइए अनफॉरगेटेबल। तो गेट योर फोन्स अप एंड कॉल मी एंड टेल मी आपकी भाई या बहन की स्टोरी। आई एम रेडी टू लिसन इट एंड ऑल ऑफ आर लिसनर्स आर ऑल्सो रेडी टू लिसन इट ऑन एयर।

You're listening to the Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, on Funny Show 104.9 FM. But okay, adulting ka khota thoda der ke liye band. Bills ki baat ho gayi, salary kahan gayi, wo bhi pata chal gaya. Ab thoda wo kaam karte hai jo sabko surprisingly bahut pasand hai, Bollywood ki khabar lena. Because Monday afternoon mein ek point aata hai jab dimag bolta hai, okay boss, काम तो बहुत कर लिए, अब बताओ बॉलीवुड में क्या चल रहा है. मूवीज आ रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे हैं, सीक्वल्स की बात हो रही है और सोशल मीडिया तो हर चीज़ की मसाला बना ही देती है. एंड और एक चीज़ मैं बताऊँ तो ट्रेलर देखते वक्त हम सब कितने ऑप्टिमिस्टिक होते, ट्रेलर देखा बोलते कि वाह क्या मूवी है. ऑलरेडी ट्रेलर देखे हम समझ जाते कि आई थिंक दिस मूवी इज़ गोना बी वेरी नाइस, अच्छा होगा. आज मुझे आपकी एक ऑनेस्ट मूवी ओपिनियन चाहिए. रिसेंटली कोई मूवी देखी है, कैसी लगी? Good, bad, overhyped. मुझे diplomatic answers नहीं चाहिए. अगर बकवास लगी तो बोलो बकवास, अगर amazing लगी तो reason बताओ कि क्यों amazing लगी. आज का movie section बिल्कुल public की opinion होने वाली है.

0: मंडे है बॉस, और मंडे को चाहिए फुल ऑन एनर्जी. अगर आप टेक्सास में बिजनेस ओनर है तो अपने बिजनेस को कमर्शियल एनर्जी नीड्स टू बी तो रखिए स्मार्ट. तारा कमर्शियल एनर्जी प्राउडली सर्विंग टेक्सास बिजनेसेस सिंस 2002 विद कॉम्पिटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विसेज एंड कस्टमाइज्ड एनर्जी प्लान्स. तो इस मंडे एनर्जी को मामले में बिल्कुल ही कीजिए इन अ स्मार्ट मूव. कॉल 8444282808 या विजिट taraenergy.com टुडे. तारा एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस इन द स्मार्टर वे. मंडे को एनर्जी भी चाहिए और स्मार्ट चॉइसेस भी.
1: आप जिस नंबर से संपर्क करना चाह रहे हैं उसकी शादी हो रही है.

This is Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, on Phanisha 104.9 FM. पर तो हम Bollywood critics के बारे में बात कर रहे थे. Which movie you feel overhyped, अच्छा है, ठीक है. तो I had a caller and she said, मैं वापस आऊँगा on Netflix. It's a very beautiful movie. So ladies and gentlemen, आपने अभी तक नहीं देखी होगी, it's right on Netflix. देखिए, when it's a good, beautiful movie, देखनी ही चाहिए. And it is starring our favorite actor, जो नए भी है लाइक शर्वरी एंड ऑल. आई थिंक यू शुड वॉच इट आफ्टर अल्फा. दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रांजिशन ऑफ हर. तो देखिए और जरूर मुझे बताइए हाउ इज दैट मूवी. इट इज मैं वापस आऊंगा.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
4: ओ हाँ, ये तो अलग है.
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर चाइल्ड इज द गिफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस. I, Sunhi Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
11: How may I help you?
12: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
11: Fear not, we have the perfect solution.
5: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 11:30 a.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
13: मैं शादी करूँगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूँगी. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
14: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
15: इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
16: मैं.
17: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
18: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे.
19: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं.
18: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
19: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
18: इंडिया तक.
19: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
5: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
20: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

This is Afternoon at Dark Time. So you're listening to me on Phanisha 104.9 FM par and main hu Snigdha. So hum baat kar rahe the about movies. So about if I talk about movies, Awara Pan 2 is coming up this week aur obviously Imran Hashmi fans ke liye to thoda emotional territory hai because Awara Pan sirf ek movie nahi thi, uske songs, uska mood, that was a whole lot of a vibe, logon ko abhi tak yaad hai. To sequel announce hote hi obvious question kya hoti hai, bhai zaruri hai kya? कुछ लोग ऑलरेडी होते कि डोंट टच द ओरिजिनल और कुछ लोग आई डोंट केयर इमरान हाशमी इज बैक आई एम वॉचिंग फॉर ऑल द इमोशनल पीपल ओनली एंड ऑनेस्टली बॉलीवुड सीक्वल्स का यही तो सीन है. अनाउंसमेंट होते हैं और ऑडियंस दो टीम्स में डिवाइड होती है. एक साइड ओरिजिनल को क्यों छेड़ रहे हो, दूसरी साइड सीक्वल आ रही है. आई एम सीटेड, सो टेल मी कौन सी बॉलीवुड मूवी का सीक्वल आप जेन्युइनली देखना चाहते हो. एंड आई एम प्लेइंग द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी आवारा पन 2 एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 2:09 PM राइट नाउ. तो आपकी मिड आफ्टरनून को थोड़ा स्लो भी कर देती हूँ.

यू नो, बॉलीवुड गॉसिप भी कितना चेंज हो गया है. पहले गॉसिप होता था कौन किसके साथ डेटिंग कर रहा है. अब गॉसिप का लेवल देखो, कौन सी मूवी साइन की, कौन मूवी से बाहर हुआ, कौन रिप्लेस हुआ, कौन सी सीक्वल बन रही है, एंड रिलीज डेट चेंज क्यों हुआ. लाइक टॉक्सिक, टॉक्सिक को तो हमने सोचा कि ये तो रिलीज ही नहीं होने वाली है, बट टॉक्सिक का ट्रेलर भी आ गया एंड वी आर गेटिंग टॉक्सिक इन थिएटर्स. आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज द कास्ट इन टॉक्सिक मूवी, मुझे सारे हीरोइंस पसंद है एंड आई वॉन्ट टू सी इतना मैड सीक्वल. लाइक इतना मैड मूवी ये लोग बना कैसे रहे. एंड इट्स ऑल इन द सोशल मीडिया. सोशल मीडिया कुछ भी करो हम सब डिटेक्टिव बन जाते हैं. कुछ तो चल रहा है. अरे भाई, हो सकता है बस एक फोटो लाइक की हो, बट द फन पार्ट ऑफ बॉलीवुड इज हम बस फिल्मी ज्ञान. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस फ्रॉम इंस्टाग्राम, इट्स कॉल्ड फिल्मी ज्ञान. इसमें बस कौन एक्टर किसके साथ जा रहा है, किसकी बेबी हुई है, कौन कब क्या कर

है बस एक फोटो लाइक की हो, बट द फन पार्ट ऑफ बॉलीवुड इज हम बस फिल्मी ज्ञान, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस फ्रॉम इंस्टाग्राम, इट्स कॉल्ड फिल्मी ज्ञान. इसमें बस कौन एक्टर किसके साथ जा रहा है, किसकी बेबी हुई है, कौन कब क्या कर रहा है, ये मूवी कैंसिल क्यों हुई है, ये मूवी का गॉसिप क्या चल रहा है, हाउ मच हम अपने ओपिनियन इसमें देते हैं. डोंट यू गैस रिलेट टू दिस? मैं तो बहुत ऐसे, अगर कुछ हुआ तो आई कॉल माई फ्रेंड्स, तुझे पता है ये मूवी अभी चल रहा नहीं है, अगर माई फ्रेंड विल बी लाइक कि नहीं चल रहा है, एंड देन आई ओपन इंस्टाग्राम और मैं उसको रील भेज देती हूँ, देखो भाई नहीं चल रहा है. दैट इज़ ऑल द फन अबाउट बॉलीवुड गॉसिप. हमें कुछ ना कुछ बात करने के लिए चाहिए, एंड सोशल मीडिया होती है इसी के लिए है. सो दिस वॉज द बॉलीवुड मंडे वाला कॉर्नर, एंड अगर आपको रिलेट कर रहे हो, आपको फन फील हो रहा है, तो कीप लिसनिंग. वी स्टिल हैव 12 मिनट्स मोर टू एंड माई शो, तो 12 मिनट्स मोर यू हैव टू लिसन टू मी, एंड यू हैव टू लिसन टू द गाने मैं प्ले करने वाली हूँ, फील गुड वाले प्ले कर रही हूँ, तो सुन लीजिए.

हेल्थ को समझने के लिए टाइम जरूरी है. एनुअल फिजिकल, एंग्जाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग एंड और मोर सब अवेलेबल है एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. तो पहले हेल्थ संभालिए, क्योंकि हेल्दी आप तो हैप्पी फैमिली. कॉल देम एट 214-666-6259 एंड बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज देयर पैशन.

कौन तुझे प्यार करेगा, लेकिन उससे पहले अपनी हेल्थ का ख्याल कौन रखेगा। डैलिस पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में आप सिर्फ पेशेंट नहीं, फैमिली है। यहाँ हर अपॉइंटमेंट के लिए मिलते हैं पूरे 30 मिनट, क्योंकि आपकी

दैट्स द अड्डा। आज आपने अपनी मंडे सर्वाइवल हैक्स बताए हैं, अपनी अडल्टिंग स्ट्रगल्स हमने बात की है, सैलरी की चोर आइडेंटिफाई कर लिए, और अब बॉलीवुड का मसाला भी मिल गया है। सो थैंक यू फॉर हैंगिंग आउट विथ मी दिस मंडे आफ्टरनून। आई एम स्निग्धा एंड यू आर लिसनिंग टू आफ्टरनून अड्डा ऑन फन एशिया 104.9 FM। अभी मंडे ख़त्म नहीं हुई है, थोड़ा और काम करो, थोड़ा और रेडियो सुनो, और प्लीज़ मूवी का रिव्यू देने से पहले मूवी देख लेना। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी गाइज। लेट मी प्ले अ लास्ट सॉन्ग बिफोर आई गो।

0: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
1: Calculating route. Rerouting.
0: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
1: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
0: क्यों?
1: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
0: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
2: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
1: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
3: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
4: कॉल द एसबीए लोन एक्सपर्ट्स.
3: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
4: कॉल द एसबीए लोन एक्सपर्ट्स.
3: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
4: कॉल द एसबीए लोन एक्सपर्ट्स.
3: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द एसबीए लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
5: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
6: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
5: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
6: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
5: ये क्या होता?
6: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
2: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
0: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
7: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
8: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
7: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
8: वेट, व्हाट?
0: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
9: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
0: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
12: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी. टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डालस. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
13: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
14: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
15: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahu.
16: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
15: Kaise?
16: Page 3 eatery?
15: No, not another restaurant again.
16: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, glass Bold, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
15: Matlab great food, great drinks, and great company. Yani ki main.
17: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
18: Hi, this is Varun Sharma, and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

जी हाँ, चुरा लिया है तुमने ही मूवी का नाम था। शान और अलका याग्निक की आवाजों में सुन रहे थे आप ये गाना। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं कि अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, अपने ख्वाबों के घर की तलाश में हैं, तो देन लेट ड्रीम होम मॉर्गेज हेल्प यू अलोंग द जर्नी। 1998 से ड्रीम होम मॉर्गेज हैज बिन हेल्पिंग फैमिलीज टू अचीव देयर होम ओनरशिप ड्रीम, और पर्सनलाइज मॉर्गेज सोल्यूशन आपके लिए बनाते हैं जो कि स्ट्रेस फ्री प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं। आप लाइसेंस्ड हैं, दे आर इन ऑल 50 स्टेट्स, एक्सपीरियंस टीम उनकी कमिटेड है टू फाइंडिंग यू द राइट लोन ऑप्शंस टेलर्ड अराउंड योर नीड्स, वेदर यू आर बाइंग योर फर्स्ट होम, यू आर रीफाइनेंसिंग, यू आर अपग्रेडिंग, और वट एवर द रिक्वायरमेंट्स आर। सो आज ही स्टार्ट कीजिए अपने इस प्रोसेस को विद कॉन्फिडेंस विद ड्रीम होम मॉर्गेज। गिव देम अ कॉल 972-245-5626, 972-245-5626 इज द नंबर, और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज dreamhomemortgage.com. And this next number is going out to Neeta ji. Neeta ji, this is from the movie Bazigar. Enjoy.

और अगर आप इमरान हाशमी के फैन हैं तो इंतजार की घड़ियां हो चुकी हैं खत्म, क्योंकि आवारापन 2 रिलीज होने वाली है जी थिएटर्स में, डायरेक्टेड बाय नितिन कक्कड़। और आवारापन का तो आप जानते हैं कि कल्ट क्लासिक थी द ओरिजिनल आवारापन, एंड एवरीबॉडी इज सो लुकिंग फॉरवर्ड टू आवारापन 2। इमरान हाशमी हैज रिटर्न्ड एज शिवम इन अ स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन, लव एज वेल एज सैक्रिफाइस। और उनके साथ मौजूद हैं दिशा पटानी इन द मूवी एंड द लेजेंड शबाना आजमी, और कह रहे हैं कि जी ब्रेथ टेकिंग लोकेशंस हैं इस मूवी में, पावरफुल परफॉर्मेंसेस हैं और स्टोल स्टरिंग साउंड ट्रैक है, जिसका एक गाना मैं भी आपके लिए डेफिनेटली प्ले करूंगी। आवारापन 2 इज ऑलरेडी क्रिएटिंग मैसिव बज आफ्टर इट्स ट्रेलर लॉन्च, सो स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया फॉर ऑल द लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स, एंड डोंट मिस आवारापन 2 जो कि 14 अगस्त को रिलीज हो रही है एट थिएटर्स नियर यू। तो बस रह गए हैं 4 दिन, बुकिंग कराइए अपनी और जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए आवारापन 2 देखने के लिए। दिस नेक्स्ट सॉन्ग जो मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, दिस इज टेकन फ्रॉम आवारापन 2 विच इज अ न्यू वर्जन ऑफ ब्यूटिफुल नंबर दैट वाज ऑलरेडी प्लेस्ड इन आवारापन 1।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: जिंदगी एक रंगमंच है
2: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
0: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
4: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
5: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 years or older to game.
6: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल FunAsia 104.9 FM.

चित्रा जी की रिक्वेस्ट पे सुन रहे थे आप ये गाना राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में. और अब आगे बढ़ते हुए जी एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ. सुन रहे हैं आप योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. फिल्मी फरमाइश के साथ मैं हाजिर हूँ. मंडेज आर एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू यू योर चॉइसेस. आपने 90s से आगे का कोई गाना सुनना है तो आप मुझसे कॉल करके उसको रिकमेंड कर सकते हैं. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. मैं हूँ किरण. और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अगर अनफॉर्चुनेटली जी हम सारे कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं, गाड़ियां हमारी जिंदगी का, ट्रैवलिंग हमारी जिंदगी का हिस्सा है, अगर अनफॉर्चुनेटली आप किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व्ड हैं या फिर देयर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो आप अटर्नी उमर ख्वाजा का नाम और नंबर अपने फोन में सेव कर लीजिए. बिकॉज ये सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती है. आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है. सबसे पहली प्रायोरिटी योर सेहत, योर मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग. उसके साथ इंश्योरेंस कंपनीज, पेपर वर्क, लीगैलिटीज, द इंटीग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन, जो हमें बहुत सारी टाइम्स पे मालूम ही नहीं होती. सो यू नीड एन अटर्नी बाय योर साइड हु कैन फाइट योर केस एंड गेट यू द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू वॉन्ट. एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी उमर ख्वाजा. नॉट ओनली विल ही गेट यू द बेस्ट कॉम्पनसेशन, बट यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग जब तक कि आप इस केस को जीत नहीं जाते. So it is an absolute win-win situation for you. Number is 469-300-5046. Call them for free consultation or visit their website attorneyomar.com. Number ek baar phir note kar lijiye, 469-300-5046. And this next number is going out to Safi. Safi, enjoy.

जी हाँ जी, रक्षाबंधन आ रहा है और इस रक्षाबंधन फानेजिया एंड चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट आपके लिए लेकर आए हैं कुछ एक्साइटिंग डेली प्राइजेस एज वेल एज ग्रैंड विन या ग्रैंड प्राइज एज वेल। तो सबसे पहले तो बताएं डेली प्राइजेस में क्या होगा, डाइनिंग एक्सपीरियंस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज, और जो ग्रैंड विनर होंगे उनको मिलेगा जी अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट। तो आपको क्या करना है टू एंटर इनटू दीज कॉन्टेस्ट, आप कह लीजिए, आपको अपनी मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी विद योर सिबलिंग रिकॉर्ड करनी है। 60 सेकंड्स का वॉइस मेमो बनाइए और व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। नंबर नोट कीजिए 214-837-7147, 214-837-7147 पे आप अपनी 60 सेकंड्स की यानी कि 1 मिनट की वॉइस नोट अपलोड कर सकते हैं, जहां आप बताइएगा कि आपकी कौन सी अनफॉरगेटेबल मेमोरी है विद योर सिबलिंग, एंड दे विल गो थ्रू ऑल योर एंट्रीज एंड देन पिक द डेली प्राइज विनर्स एज वेल एज द ग्रैंड विनर। फॉर कंप्लीट कॉन्टेस्ट डिटेल्स आप जा सकते हैं फानेजिया के सोशल मीडिया पेजेस पे। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन आवर सोशल मीडिया पेजेस, स्टार्ट फॉलोइंग अस। एंड बताती चलूं आपको, चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट में लोकेटेड है एंड दिस इज वेयर यू विल मेक अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। यू हैव टू बी 21 इयर्स और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई एंड प्लीज प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। एंड अब आपको एक और मौका दे रही हूं, अगर आप ऑन एयर हमारे फानेजिया के ऑन एयर से अपनी एंट्री बनाना चाहते हैं तो ऑल यू हैव टू डू इज गिव मी अ कॉल राइट नाउ। अगले 3-4 मिनट मैंने फोन लाइंस खोल रखी हैं, 972-235-5555 आप स्टूडियो का नंबर है, कॉल कीजिए मुझे और बताइए आपकी कौन सी अनफॉरगेटेबल मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं विद योर सिबलिंग, एंड आई कैन सेंड योर डायरेक्टली एंट्री डायरेक्टली टू चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट एंड दे कैन पिक द विनर्स। सो आई कैन हेल्प यू इन दैट। 972-235-5555 is the number to the studio if you want to share one of your memories right here.

और इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आकर अभी आपकी फरमाइशों का सिलसिला जारी है. आई हैव अ फ्यू सॉन्ग रिक्वेस्ट लाइन अप एंड वी आर गोइंग टू प्ले देम एज दे वर रिसीव्ड. स्टे ट्यून्ड, यू आर ट्यून्ड इनटू योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
2: Kya matlab?
3: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
3: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: Ab to karna hi padega, madam.
4: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: How may I help you?
6: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
5: Fear not, we have the perfect solution.
7: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 11:30 a.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
8: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
9: एक और लड्डू ले लो.
10: थोड़ी और बिरयानी.
9: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा.
11: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए.
12: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए. स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अलॉन्ग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स. कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर.
13: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
14: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
15: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
16: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
17: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
16: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
18: Dallas ki dhadkan 104.9 FM. Funisia Radio.

And it is now time to bring you a giveaway. You have a chance of winning $10 off your dine-in bill of $50 or more. और आपको क्या करना है जी? मुझे बताना है इस सवाल का जवाब चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से, जो एलन में लोकेटेड हैं, आपके लिए ये गिवअवे लेके आए हैं वो. और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं कि गिवअवे तो ये है ही, लेकिन आप उनको जरूर विजिट कीजिए फॉर सम अमेजिंग स्पेशल थालीज जो वो मंडे थ्रू फ्राइडे ऑफर करते हैं, एक्साइटिंग न्यू डिशेज जो कि डेली रोटेट करती हैं ऑन देयर lunch specials. They are located off McDermott Drive in Allen. Iske ilawa they have behtareen, wo kehte hai na, menu hai unka lunch specials ke liye, dinner ke liye. Visit chandigarhbites.com to find out more about what they are offering you. And now you have a chance of winning this $10 off your dine-in bill of $50 or more. If you have won this in any other show at Fun Asia in the past one month, please give somebody else a chance because you can only be a winner once a month. ये जो गाना अब मैं आपके लिए प्ले करूंगी, आपको मुझे ये बताना है कि ये गाना कौन सी मूवी से लिया गया है. तो गाना सुनिए और 972-235-5555 पे कॉल करके बताइए द मूवी नेम ऑफ दिस सॉन्ग एंड यू कैन विन दिस $10 ऑफ योर डाइनिंग बिल ऑफ $50 और मोर फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन.

नजरें मिलाना, नजरें चुराना, ये गाना आप सुन रहे थे. और चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से आपके लिए गिव अवे आया था. यू कैन हैव वन $10 ऑफ योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. चंडीगढ़ बाइट्स, दे आर लोकेटेड इन एलन. और आपसे पूछा था कि ये जो गाना है इसकी मूवी का नाम बता दीजिए. आप सब जी बिल्कुल, मतलब यू गाइज आर मास्टर्स इन बॉलीवुड मूवीज. सही नाम इज जाने तू या जाने ना. और आप सब ने बिल्कुल बिल्कुल 100% सही जवाब दिया. आपको बताती चलूं जी, जाने तू या जाने ना में हमें नजर आए थे इमरान खान, जनीलिया डिसूजा और भी बहुत जबरदस्त स्टार कास्ट थी इसमें. तो आप सबके फोन कॉल, सिद्धार्थ, पूर्वा, हिमांशु, ज्योति, कौसर, सवा, थैंक यू सो मच आपकी कॉल्स का, आपकी पार्टिसिपेशन का और आपके सही जवाब का. बट जैसे आप जानते हैं, मैं मैथ के फॉर्मूले में आपकी जिस सीक्वेंस में आप कॉल करते हैं वो नंबर असाइन होता है आपको, और फिर उसको मैं मैथ के फॉर्मूले में डाल के एक नंबर निकालती हूं. और हमारे जो आज के लकी विनर हैं वो हैं सिद्धार्थ श्रीवास्तव. सिद्धार्थ, कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन में पहुंचाने का. एंड देन यू विल हैव अबाउट 7 days टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर $10 ऑफ $50 डाइन इन बिल. कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंजॉय योर फूड. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, फन एजे इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है. ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड, एंड योर पार्टिसिपेशन मीन्स अ लॉट लॉट टू अस. बहुत बहुत शुक्रिया. एंड दिस नेक्स्ट नंबर इज गोइंग आउट टू सबा.

रिक्वेस्ट आपकी आ रही हैं एंड दे आर लाइनिंग अप. आई एम ट्राइंग टू प्ले देम एज आई रिसीव देम. सो अगली रिक्वेस्ट प्ले कर रही हूँ मैं पूर्वा के लिए स्पेशली. बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू दैट DFW के तमाम लिसनर्स के लिए ये अच्छी खबर ये है कि इंतजार की घड़ियाँ खत्म हो गई हैं क्योंकि PMJ Jewels अब फ्रिस्को में आ चुका है. दे आर ब्रिंगिंग ओवर 60 years ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस क्राफ्ट्समैनशिप. और आप क्या करेंगे जब यहाँ जाइए, आप एक्सप्लोर कीजिए, देखिए. स्टनिंग गोल्ड ज्वेलरी है उनके पास, डायमंड ज्वेलरी है, ब्राइडल कलेक्शन है. जो भी आपका इवेंट है PMJ Jewels पे बन जाएगा वो एक्सट्रीमली स्पेशल. प्राउडली एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा, PMJ इज अ नेम दैट हैज बीन ट्रस्टेड बाय जनरेशंस. सो उन्हें विजिट कीजिए, फ्रिस्को में लोकेटेड हैं ऑन मेन स्ट्रीट. और देखिए कि जब कहानी, वो जो कहते हैं ना जेवर, जब कोई कहानी सुनाता है तो वो कैसी होती है. फॉर दैट यू विल हैव टू गो टू PMJ Jewels इन फ्रिस्को ऑन मेन स्ट्रीट एंड चेक इट आउट. पूर्वा, दिस इज फॉर यू.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, a division of Brazos National Bank.
7: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
8: Call 857-891-8942 today.
9: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
10: Ocho.
11: Hoko.
10: Ocho.
11: Hoko.
10: Ocho.
11: It's Hoko.
12: अरे बस भी करो यार.
11: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
12: नाम Hoko हो या Ocho क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूड़ी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
8: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक Hoko अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
14: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
13: सच में सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
8: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
15: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
18: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
19: लिया.
18: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
19: नहीं आया.
18: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-8255.
14: 772. That's 972-863-772.
10: Visit www.senadainc.com today.
19: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
20: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
19: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
21: फूडिस्तान इन ऑबरी. मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट.
22: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
23: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
22: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
24: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट.
25: कितने आदमी थे?
26: शकर पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
2: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
1: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
2: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
3: Aji sunte ho?
4: Aji nahi. AG sunte hain.
3: The OG of tax planning, AG Fintax. Sunenge aapke financial concerns, denge smart solutions. Every Friday 9:45 a.m. only on Funasia Radio.
5: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
6: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
7: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Funasia Radio.
8: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल Funasia 104.9 FM.

This part of our show is brought to you by Page 3 Eatery. If you haven't been there yet, bhai, please jaiye. Kyunki aapko main please isliye keh raha hu, aapko bhi to hak hona chahiye ki acha swad kya hota hai wo aap dekh lijiye. And I'm talking about specifically their charts. Agar aapne unka wahan jaake palak patta chaat nahi khaya, palak patte ki chaat khani hai, साथ में आपने खाना है वड़ा पाव. वो अंकल याद आ गए मुझे आयुर्वेदा वाला. अदरक की गांठ लेनी है, साथ में लेनी है हल्दी की गांठ, दोनों को पीसना है. अच्छा वो नहीं, आपको कुछ करना, आपको सिर्फ पेज 3 ईटरी जाना है. वहां जाके आपको बताना है जी मार्विन कहता है कि आपकी पालक पत्ता चाट जबरदस्त है, आपका वड़ा पाव जबरदस्त है, आपका गलौटी कबाब जबरदस्त है, और नवाब रैनसम बिरयानी जबरदस्त है. जाके चेक कर लीजिए जबरदस्त है कि नहीं. पुट मी टू द टेस्ट, पेज 3 इन मखिनी, राइट ऑन हब 121. और इस गाने के बाद लेंगे हम छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर, आराम ब्रेक के उस पार.

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 2148377147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
2: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
3: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज. होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज. लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू.
4: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 2023 थ्रू 2026. मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर. कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे.
5: अरे यार, घर मिल गया.
6: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
7: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
6: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
7: बिल्कुल. विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
8: होचो
9: होको
8: ओचो
9: होको
8: ओचो
9: इट्स होको.
10: अरे बस भी करो यार.
9: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
10: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
7: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
11: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे.
12: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं.
11: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
12: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
11: इंडिया तक.
12: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्डवाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
7: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
13: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए.

0: यार ये गवर्नमेंट वाले भी ना ठीक नहीं है लोग यार। मैंने देखा है इंडिया में ना ट्रेन में लिखा हुआ था कि बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार नहीं। मैंने टिकट ली है और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो यार कहना क्या चाहते हो, हम बेवकूफ हैं?
1: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा
0: नहीं। टेक्निकली सोचा जाए तो बात ठीक है ना कि टिकट टिकट ना लेके ट्रैवल करने वाले होशियार, तो जिन्होंने टिकट ली है उनका क्या? बात कुछ हजम नहीं हुई। हाजमोला गोली 5:25 इन द स्टूडियो क्लॉक, 5:25 स्टूडियो की घड़ी में जी मैं रहूंगा आपके साथ ऑल द वे टिल 7 o'clock। और मैं लड़कियों की रूटीन देख के ना वैसे कहता हूँ यार कमाल है। मतलब ये लोग पार्टी से घर आती हैं, पहले तो पार्टी पे जाने से पहले मेकअप करना पड़ता है, बहुत कुछ है विच इज़ गुड। मेकअप उनके लिए बना है तो लगाएंगी, बिल्कुल लगाइए आप। फिर आप जब घर से वापस पार्टी से वापस आती हैं, फिर आपको मुंह धोना पड़ता है, उसके बाद आपका प्रोसेस है कि मुंह धोने के बाद सम आइटम यू अप्लाई, देन यू वेट फॉर सम टाइम, देन यू अप्लाई द सेकेंड आइटम। अब मेरे जैसा बंदा अगर घर जाएगा ना तो मुंह वो थोड़ी धोते हैं, हम सोते हैं, क्योंकि मुंह तो हम तब धोते हैं जब हमने उठना होता है सुबह। अब अगर मुंह पे छींटे मार लिए और सोने की तैयारी कैसे होगी भैया? मुंह पे छींटे तो तब मारे जाते हैं जब हमने नींद से उठना होता है। खैर आपके लिए लगा रहा हूँ जी एक प्यारा सा गाना। इन दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय चौकटाव कैसीनो। लेके आए जी आपके लिए एक बड़ा ही ऑफर, अच्छा फॉर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। क्या है वो बताता हूँ यार, पहले एक गाना तो हो जाए, कुछ एंटरटेनमेंट साथ साथ चलती रहनी चाहिए। नहीं ये लो

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: जिंदगी एक रंगमंच है
3: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
1: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com.
4: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
5: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
4: कहाँ?
6: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
1: फूडिस्तान इन ऑबरी. मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट.
7: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
8: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
7: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
8: वेट, व्हाट?
5: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
9: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
5: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
10: अजी, सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
11: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
10: सच में? सब संभालेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
13: How may I help you?
10: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
13: Fear not, we have the perfect solution.
1: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 11:30 a.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
0: इस रक्षाबंधन चौक टॉक सीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांट के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज, एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौक टॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांट. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
1: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.

देखो वैसे डैलस फोर्ट वर्थ आपके प्यार में तो मैं भी दीवाना हूँ, और इतना दीवाना हूँ कि मेरा बस चले तो मैं तो प्रपोज कर दूँ आपको, बट आपके पति गुस्सा करेंगे और उधर से मेरी बीवी गुस्सा करेगी, इसलिए हम इस बात को रहने देते हैं। हम सिर्फ रेडियो संगम, रेडियो तक ही जो है ना हमारा संगम, वो बढ़िया है ना। गाने मैं सुनाऊंगा, बातें आप करेंगे, कुछ मैं आपकी सुनूंगा, कुछ आप मेरी सुन लीजिएगा। आज आप सबका दिन है, पता है, आज लेजी डे है गाइस एंड गाइस एंड गाइस एंड गर्ल्स एंड वुमेन एंड जेंटलमैन। टुडे इज अ लेजी डे व्हिच इज सेलिब्रेटेड ऑन ऑगस्ट 10th, ऑफरिंग अ मच नीडेड पॉज फ्रॉम आवर ऑलवेज ऑन वर्ल्ड ड्यूटी जो हम करते रहते हैं। दिस इज योर ऑफिशियल परमिशन। आज मेरी तरफ से 6 बजे के बाद आप सबको छुट्टी है यार, घर जाओ आराम करो। देखो ऐसा कोई बंदा मिलेगा जो आपको दे सके कि 6 बजे के बाद घर जाओ आराम करो, रिलैक्स करो, नेटफ्लिक्स देखो, खाना खाओ, सो जाओ, सुबह तैयार हो, वापस काम पे जाओ। बट आज ये लेजी डे है, ये मेरे लिए तो परफेक्ट डे है। आप लोगों को ये पसंद है कि नहीं वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अच्छा एक बात ये बताओ कि ये जो मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, यू नो वी सीन मियाँ बीवी फाइट क्वाइट अ बिट एंड दैट्स पार्ट ऑफ द पार्सल, कि जहाँ दो बर्तन हैं वहाँ टिंग टनिंग टिंग तो होगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इन योर ओपिनियन व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ अ फाइट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ? ठीक है, आपने अपने अपने ओपिनियन मुझे बताने हैं, और जो मुझे देगा ज़बरदस्त मसालेदार तड़ाकेदार जवाब उसको मैं दूंगा जी एक इनाम, एंड दैट इनाम इज़ गोना बी फ्रॉम अफूडिस्तान का एक नया रेस्टोरेंट आया है जिसका नाम है डी वाइब, DEVIBE, दोनों सेपरेट वर्ड हैं, DED एंड देन VIBE वाइब। ये दे रहे हैं जी आपको ऑबरी में एक ऑप्शन वे यू कैन गेट एनी थिंग ऑफ देयर मेन्यू एब्सोल्युटली फ्री। जी हाँ बिल्कुल सही सुना, एक आइटम कोई भी मेन्यू से, चाहे बिरयानी खाओ, कबाब खाओ, टिक्का खाओ, वट एवर यू वांट टू ईट, इट इज़ गोना बी एब्सोल्युटली फ्री। याद रखिएगा कि ये ऑबरी में है, राइट ऑन हाईवे 380, राइट ऑन हाईवे 380, विच इज़ वेरी क्लोज टू लिटल एम, आपका प्रॉस्पर एंड यू नो लिटल बिट ऑफ डेंटन इज क्लोज बाय एज वेल, बट इफ यूर फ्रीक्वेंट ऑन हाईवे 380 देन दिस इज योर बेस्ट प्लेस टू गो टू। नाउ दिस डी वाइब रेस्टोरेंट इज लोकेटेड नेक्स्ट टू फूडिस्तान, विच इज़ अ फुल सर्विस ग्रोसरी स्टोर, चाहे फ्रेश मीट हो, फ्रेश प्रोड्यूस हो, ग्रोसरी की सारी असेंशियल्स हों, दे हैव इट ऑल फॉर यू राइट देयर। एंड इफ यू ऑर्डर ऑनलाइन डिलीवरी या फिर आप घर डिलीवरी करवाना चाहते हैं, $30 से ऊपर एनी थिंग दैट यू गिव दैम एन ऑर्डर फॉर, यू विल गेट 10% ऑफ, 10% ऑफ मिलेगा आपको एनी थिंग दैट इज $30 और मोर, बट यू हैव टू बी इन अ 5 mile रेडियस। समझ आ गई जी बात? सो फूडिस्तान राइट इन द हार्ट ऑफ ऑबरी ऑन हाईवे 380, ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स $30 और मोर गेट 10% ऑफ, एंड उन्हीं का रेस्टोरेंट है वहाँ पे डी वाइब, विच इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू विन एनी आइटम ऑफ देयर मेन्यू एब्सोल्युटली फ्री। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि हस्बैंड वाइफ में ये जो लड़ाई होती है इसका मुख्य कारण क्या है, इन योर ओपिनियन बताइए अपने अपने दिमाग की गहराइयों से और दिल की चतुराइयों से कि क्या है ये वजह।

0: मन में यही गाना चल रहा होता है आपस में, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, बट नॉनदलेस मैं पूछ रहा हूँ जी आपसे एक सवाल, पहले तो ये बताने शो का नाम है जी द बिंदास शो, मैं बंदा बिंदास मार बिंदास, मंडे टू थर्सडे 5 to 7 PM करते हैं जी आपको एंटरटेन। अब कौन है मेरे साथ, कर लेते हैं जी इनसे भी बात। गुड इवनिंग फणीशिया, कौन बोल रहा है वणी साई?
1: मैं एमजे बोल रहा हूँ, मृत्युंजय।
0: मिथुन जय,
1: मृत्युंजय,
0: मृत्युंजय, मैंने कहा एमजे कहीं मिथुन जैक्सन, मतलब मिथुन भाई भी डांस करते थे, जैक्सन भी डांस करते थे, तो मृत्युंजय। मृत्युन भाई कैसे हो आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं अच्छा हूँ, आज आप ठीक लग रहे, भाभी ने टिफिन पैक करके दिया था साथ?
1: हाँ
0: क्या था आज टिफिन में?
1: नहीं वो काम के लिए जाती है, मैं घर में रहता हूँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम है तो।
0: ये आजकल जो हम टीवी में देख रहे हैं मॉडर्न हस्बैंड सिचुएशन, आप उसमें लाइव हो, क्या बात है, वेरी नाइस। मृत्युन भाई बताइए, मुख्य कारण एक पति पत्नी में लड़ाई क्यों होती है?
1: लड़ाई इसलिए होता है बच्चों की वजह से, बच्चे ने ये किया वो बोलते हैं कि, तब दूसरे बोलते हैं कि तुम्हें वो करवाना था, तो दूसरी बोलते हैं कि तुम्हें करवाना था, दैट इज मोस्टली द थिंग आई हैव सीन।
0: बच्चों की वजह से होती है। आपके घर में कितने बच्चे?
1: दो बच्चे हैं।
0: दो बच्चे हैं, चलो मैं कहता हूँ ये बच्चे बच्चे ही रहे, थोड़ी सी नोकझोंक आपकी भी चलती रहे। जवाब आपका मैंने लोड कर लिया है, और आपने अपना नाम बोला था मृत्युन,
1: मृत्युंजय,
0: मृत्युंजय, मृत्युंजय, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल बड़े भैया। लेट्स सी अगले नंबर पे पायदान पर कौन है हमारे साथ। गुड इवनिंग फणीशिया, हू इज दिस?
2: एंड दिस इज सुमित।
0: सुमित जी, क्या सुमित कॉलिंग? सुमित, मेरा भी मिडिल नेम सुमित है जी, SUMEET।
2: क्या बात है, दूसरे सुमित।
0: सुमित जी कैसे हैं? सबके मीत सुमित, क्या चक्कर है यार, ये बीवी और हस्बैंड में लड़ाई काय को होती है?
2: क्योंकि उनकी शादी हो गई है, शादी हुई है, बीवी हस्बैंड है, नहीं होती तो नहीं होती लड़ाई, यही रीजन है।
0: कहते हैं शादी हुई है इसलिए लड़ाई होगी। ठीक हो गया सुमित भाई, आपका भी जवाब हमने लाख कर लिया है। गुड इवनिंग फणीशिया रेडियो, कौन बोल रहा है भाई? हेलो,
3: मैं
0: नीलू जी,
3: आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए
0: पहले अपना,
3: अरे आपने पहले, कैसे पहचान
0: पहले, पहले अपना नाम बताओ नीलू जी।
3: मुझे नहीं पता मेरा नाम।
0: चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है। नीलू जी कैसी हैं आप?
3: बस
0: आपको पता है, आपको पता है कि जब वो गाना बना था ना इलू इलू, क्या है इलू इलू, वो एक्चुअली नीलू नीलू करना चाहते थे, वो एक्चुअली नीलू नीलू करना चाहते थे, बट जो गाना लिख रहा था ना तो वो नीलू बड़ी है ना, बड़ी हो आप, जो गाना लिख रहा था वो बच्चा था, तो उसको रिस्पेक्ट में आपका नाम नहीं ले सका, इसलिए वो इलू इलू कर गया। अच्छा नीलू जी, अब आप बताएं कि आपकी हस्बैंड से लड़ाई मेजोरिटी क्यों होती है?
3: अरे हम लड़ाई का तो कोई रीजन ही नहीं होता, अगर हम कहें सूरज से ईस्ट से उगा तो पता चलेगा, वेस्ट से पता चलेगा कि अरे वो ईस्ट से कैसे उग सकता है, ऐसा हाल है।
0: वैसे तो उगता ईस्ट से ही है,
3: रीजन है,
0: वैसे तो उगता ईस्ट से
3: मेरे हिसाब, मेरे हिसाब, हाँ बट मैं वही इतना तक निगेट हो सकता है।
0: अच्छा नीलू,
3: तो वो रीजन यही है कि पिछले जन्म के
0: पाप की वजह से है।
3: हाँ,
0: अच्छा अच्छा, पिछले जन्म के पापों की वजह से ये कर्म इस गर्म में झेलने पड़ रहे हैं। अच्छा नीलू जी, आपको पता है नीलू से नीले नीले अंबर भी होता है ना, नीला नीला अंबर होता है और चांद जो है वो रात को निकलता है। आपको पता है कि जो सन और सन है वो तो आपने बता दिया, ईस्ट से निकलता है वेस्ट में सेट हो जाता है, पर आपको ये पता है कि चांद जो है वो किसी भी डायरेक्शन से क्यों निकलता है?
3: नीलू जी चांद,
0: थोड़ा सोचिए, पता है वो क्यों निकलता है नीलू जी, किसी भी डायरेक्शन से? मैं बताऊं?
3: बताइए।
0: मैं बताऊं? क्योंकि जो जो जो ब्यूटी पार्लर होते हैं ना नीलू जी, वो हर डायरेक्शन में होते हैं, बात ये। ऑल राइट, कंटिन्यूइंग आवर कॉन्वर्सेशन की लड़ाई क्यों होती है भैया, कुछ जवाब आए मेरे पास, बच्चों की वजह से, एक बोले शादी की वजह से, नीलू जी कहती हैं जी पिछले जन्म के पापों की वजह से। एक कॉल और लेते हैं फिर देखते हैं कि ये क्या कहने चाहते हैं हमारे साथ इन रिगार्ड्स टू हु दे थिंक इज द कल्प्रिट या व्हाई लड़ाई हैपन। गुड इवनिंग फणीशिया, हु इज दिस?
4: हे दिस इज सचिन।
0: हे हे हे हे हे मिस्टर लोवा लोवा। अच्छा सचिन कैसे हो?
4: एकदम बढ़िया, आप कैसे हो?
0: मैं भी बढ़िया हूँ सर, बचपन में गिर गया था, सिर पे चोटें काफी लगी हुई हैं, वो कभी कभी उभर के बाहर आ जाती हैं, बाकी सब ठीक है। अब आप ये बताओ कि आप शादीशुदा हो?
4: यस।
0: शादीशुदा और गुमशुदा, वैसे दोनों कितने सिमिलर वर्ड है ना, खैर
4: वो भी सेम ही है।
0: अच्छा ये बताइए सर कि आपकी वाइफ से लड़ाई का जब होती है तो मुख्य कारण क्या होता है?
4: लड़ाई का कारण तो यही है क्योंकि घर में तो दो ही जन है, तो झगड़े किससे? तो फिर एक दूसरे से झगड़ते बैठते हैं, बाकी कुछ दूसरा कारण नहीं रहते।
0: ये भी ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे मजेदार कॉल्स मुझे लगता है जो इसमें चौका मार गई वो थी नीलू जी, कहती है जी पिछले जन्मों के पाप की सजा भी तो किसी को मिलनी है। नीलू जी प्लीज गिव मी अ कॉल ताकि मैं आपकी इन्फॉर्मेशन लेके आपको इनाम दे दूं।

0: Grand Prairie, Arlington, and if you are living in Mansfield, the good news for you is कि आपके पास जो neighborhood grocery store की आपकी लगी रहती थी ना वाट, कि husband भी परेशान, कहाँ भेज रही है यार इतनी दूर grocery लेने, और आप भी परेशान, कहाँ जाऊंगी इतनी दूर grocery लेने, तो चिंता नहीं करिए, because Himalayan Bazaar आ चुका है जी, right in the heart of Grand Prairie for you, right at the intersection of Highway 20 and 360, and this Himalayan Bazaar is Indian, Pakistani, Nepalese, desi grocery store, यार, full on desi grocery store, इसका address मैं आपको दे देता हूँ जी, it's 5103 Magna Kharda Boulevard, and that is in Grand Prairie. The best part is कि अगर आप रहते हैं जी 5 mile के radius में, then consider yourself lucky because you get a free delivery. जी हाँ दीदी, $50 की grocery लीजिए, delivery बिल्कुल मुफ्त. And all you have to do is just check your address, Google this place called Himalayan Bazaar. सारी ग्रोसरी के साथ साथ आपको मीट शॉप भी मिलेगी जी, फ्रेश मीट फॉर यू, एंड देन फॉर द नेपलीज ब्रदर एंड सिस्टर, रामरो काम आपके लिए ये है कि आपको वहाँ पे वाटर बफ मिलेगा बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का, एंड ऑफ कोर्स इंडियन ग्रोसरीज, चावल दाल आटा, इसके अलावा शाम को होता है जी तगड़ा काम, ताज़ा पकौड़े, समोसे, चाय और कॉफ़ी, ये हो गया जी सोने पे सुहागा. ठीक है जी, अब आपने जाना कहाँ इसके लिए, 5103 मैग्ना खाड़ा बुलेवार्ड, दैट इज इन कहाँ, Grand Prairie. Make sure to Google that name. And if you're living in a 5 mile radius, याद रखिएगा कि आपकी home delivery होगी जी, वो वाली नहीं, grocery की delivery घर पे आएगी और उस पर आपको discount भी मिलेगा जी. If you get $200, you get 5% off with 100 points. Every dollar is a point. एक गाना आया नया भाई, एक महीने पहले, खैर एक महीना हो गया, but this is called कहर, और ये फिल्म आ रही है धमाल 4. गुरु रंधावा, अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी.
1: आदि वो लोग को शूट कर रहे हैं,
2: हमारे बिना शूटिंग ऐसे कर रहे हैं,
3: ये तो अपना गाना, या कम ऑन, धमाल की शूटिंग हमारे बगैर.
4: Got it.

0: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
1: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
0: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
1: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
2: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क। Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
7: क्या मतलब?
8: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
8: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
9: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
11: जिंदगी एक रंगमंच है
12: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
2: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com।
13: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
2: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
13: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

एक आर्टिकल मिला है मुझे बड़ा जबरदस्त था, मैंने कहा मैं अपनी दोस्तों के साथ शेयर कर लेता हूँ यार, लिसनर्स के साथ। तो आर्टिकल में लिखा है बीवी को कैसे नियंत्रण में रखें, और ये आर्टिकल इतना मजेदार है कि एक ही सांस में पढ़ लेंगे इसको। सुबह टहलने जाइए, ज्यादा हरी सब्जियां खाइए, क्रोध ना करें, खान पान का विशेष ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप करवाएं, वगैरह वगैरह वगैरह। पर यहाँ तो ऊपर जाके पढ़ रहा हूँ तो लिखा, ओहो ये लिखा है बीपी को कैसे काबू में रखें यार, हट। इट्स टॉकिंग अबाउट ब्लड प्रेशर, नॉट बीबी प्रेशर, हट। बंदा ये बिंदास है जी, वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। 6:25 स्टूडियो की घड़ी में रहूंगा आपके साथ ऑल द वे टिल 7 o'clock दिस इवनिंग, बिकॉज दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो, जिसपे मैं आता हूँ जी आपके पास कुछ अपनी बातें करने, कुछ आपकी सुनने। बर्थडेज एनिवर्सरीज आर ऑलवेज वेलकम ऑन आवर स्टेशन, और आज ऐसा ही एक बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिस बर्थडे विश इज ब्रॉट टू यू बाय अटॉर्नी ओमर ख्वाजा। इफ यू डोंट नो हु ही इज, तो उनका मैं बता देता हूँ जी, एक्सपर्ट है जी व्हेन इट कम्स टू एक्सीडेंटल केसेस। वैसे तो हम उम्मीद करते हैं कभी भी आप एक्सीडेंट में ना घुसें या कोई ऐसी ट्रबल आपको तंग ना करे, बट इफ यू स्लिप और फॉल और इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन अ कार एक्सीडेंट, एक नाम याद रखिए, अटर्नी ओमर ख्वाजा। ऑल यू हैव टू डू इज गूगल देम, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। एंड दिस नेम क्यों चाहिए, व्हाई शुड दिस नेम बी विद यू, बिकॉज व्हेन यू गेट इन एन एक्सीडेंट आप पहले तो मेक श्योर कीजिए कि आप ठीक ठाक हैं, कॉल 911, या दैट्स द फर्स्ट थिंग टू डू। द सेकंड कॉल यू शुड मेक इज टू दिस अटर्नी, बिकॉज ये अटर्नी जो है ये है जी हैमर फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज इन अ वे टू मेक श्योर दैट यू गेट ऑल द राइट कॉम्पनसेशन। चाहे आपकी गाड़ी का खर्चा है, चाहे आप काम पे नहीं जा सके, उसका वर्क लॉस है, यू हैव मेडिकल इंजरीज, एंड इफ देयर इज कॉम्पनसेशन अवेलेबल ही विल मेक श्योर एंड विल फाइट टिल द एंड टू गेट यू व्हाट यू डिजर्व। एंड द बेस्ट पार्ट इज नो विन नो फी, यू डोंट पे देम एनीथिंग अंटिल यू विन, एंड आई थिंक दैट इज अ विन विन राइट देयर। बर्थडे की बात की है जी, तो आज बर्थडे हम मना रहे हैं हमारे यहाँ डालस फोर्ट वर्थ की सुनीता सेठी जी का, हुज अ वेरी डियर लाइक एन एल्डर सिस्टर टू मी, एंड हर डॉटर अनीता सेठी जस्ट कॉल्ड मी एंड सेड आज मॉम्स बर्थडे, एंड आई डिड विश हर ऑन सोशल मीडिया। बट सुनीता जी, वंस अगेन विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, तानु जन्मदिन दी बहुत बहुत बधाइयां जी, एंड टू योर किड्स हु लव यू सो मच, इट्स ऑलवेज गुड टू सी। एक रंजीत बाबा का पंजाबी गाना है जी, अगले जन्म, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोना प्रेजेंट टू यू, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मेरे समोसे ते मेरा लड्डू या रसगुल्ला रख लियो, थैंक यू।

क्या बात है, वेरी नाइस सनम भाई। ये तो मुझे बैंड ही बड़ा पसंद लगता है यार, मजा आ जाता है इसके गाने सुन के। ऑल्दो इट्स अ न्यूअर वर्जन ऑफ द ओल्डर ट्रैक्स, बट द ओरिजिनलिटी जो वो रखते हैं, साथ में थोड़ा सा डिफरेंट म्यूजिक डालते हैं, मजा आता है यार। व्हाट्स योर ओपिनियन, बताइएगा मुझे कि आपको सनम कैसे लगते हैं। आपके सनम नहीं, ये सनम बैंड वाले सनम कैसे लगते हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अब देखो, इस गाने में ना लेखक आपसे खेल गया। आपने देखा वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। ये सवाल नहीं पूछ रहा है, ये आपको बता रहा है कि मुझे क्या पता था कि मुझे किस करना बहुत अच्छा लगेगा, और है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। टुडे इज ऑल्सो नेशनल माउंटेन डे, तो क्यों ना हो जाए थोड़ा मनाली ट्रांस।

एक राकेश भाई का कॉल आया, बोले मार्विन भाई थैंक यू सो मच, अच्छा शो करते हो आप, आपकी जो एनर्जी है ना वो बड़ी अच्छी लगती है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी। अब मैं उनको क्या बताऊं कि बचपन में ना मेरे पापा ने पूछा था एक दिन मुझे पकड़ के, बचपन नहीं जवान हो गया था मैं, कॉलेज को ले जाने लग पड़ा था, पंगे पुंगे अपने बज रहे थे इधर उधर और काफ़ी जगह यू नो हमारी कंप्लेंटें इधर से लेफ्ट से राइट से चलती रहती थी। तो मुझे एक दिन बोले कि यार मेरे घर का नाम ना कन्नू है, तो मुझे बोले कन्नू तू मेरा नाम कब रोशन करेगा यार, मतलब तेरे भाई को देख हर जगह अच्छे नंबर्स, गुड डांसर, कोई कंप्लेंट नहीं, टीचर्स का लव, मतलब टीचर लव करती हैं, लव मुझे भी करती हैं टीचर्स, पर वो बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि नॉटी बॉयज़ आर मोर प्रेफर्ड। एनीवे तो मेरे पापा कहते तू मेरा नाम कब रोशन करेगा, मैंने कहा पापा 15 मिनट रुक जाओ बस। मैं ऊपर गया, मैंने पेन से पापा का नाम एक पेपर पर लिखा, माइकल दास, और एक लैम्प लिया स्टडी लैम्प वो रखा टेबल पे, और मैंने बटन दबाया, उसके नीचे पेपर रखा, पापा को बुलाया, मैंने कहा पापा देखो नाम रोशन हो गया यार, ऐसे मत कहा करो।

0: तो भैया, अगर आपके माँ बाप कहते हैं हमारा नाम रोशन करो, दोनों का नाम लिखो पेपर पे, ऊपर से लाइट डालो, बोलो ये लो रोशन हो गया, पर उसके बाद जो डंडे की दर्द होती है वो आपको पता लगेगा, उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ, मैंने देख लिया, डंडा बड़ी जोर से लगता है।
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव।
5: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-10 99.
6: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
7: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funasia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
8: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
9: लिया।
8: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
9: नहीं आया।
8: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
7: Visit www.sanadainc.com today.
10: Weekend ka plan abhi tak nahi bana? Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
11: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down? So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189, kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
12: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी, 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
13: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

मेहमान और धनवान की बात तो होती रहेगी, असल धनवान तो वही है दोस्तों, जिसके पास कुछ अच्छे दोस्त हैं, जिसके पास कुछ वेल विशर्स हैं, जिसके पास ऐसे लोग हैं जिन पे वो रिलाई कर सकता है, स्पेशली इन टफ टाइम्स। एंड हमारा एक दोस्त मशरूक खालिद इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, ही इज बैटलिंग कैंसर एंड ही इज बीन बैटलिंग दैट फॉर द लास्ट 8 मंथ्स। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज, अगर आप मुझे प्यार करते हैं, अगर आप अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, अगर आप अपने दोस्तों को प्यार करते हैं, तो यार एक दिल से दुआ जरूर निकालिए मेरे इस दोस्त मशरूक खालिद के लिए, हु इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम एंड अ टफ टाइम फॉर द इंटायर फैमिली। सो आई'ड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आज जब भी आप ऊपर वाले से दुआ करें, हुएवर यू बिलीव इन, चाहे आप अल्लाह में विश्वास रखते हैं, राम कृष्ण जीसस, हुएवर इट इज दैट यू बिलीव इन, प्लीज पुट मशरूक खालिद, दोबारा से नाम बता रहा हूँ, MASHROOK खालिद, इन योर प्रेयर्स। ट्रस्ट मी, ये जो दुआएं हैं ना जनाब, इसमें जो पावर है शायद ही किसी और टावर में हो। सो मेक श्योर यू गेट योर प्रेयर्स गोइंग टुडे फॉर मशरूक खालिद। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट लेट यू नो दिस लास्ट पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाई टेक्सास स्टार रिहैब परफॉर्मेंस सेंटर है जी, विच इज अ ब्रांड न्यू फैसिलिटी इन फ्रिस्को। दे हैड वन हियर बट दे बिल्ट अ ब्रांड न्यू वन इन फ्रिस्को अगेन। चाहे ऑर्थोपेडिक या स्पोर्ट्स इंजरीज हो, चाहे पेल्विक फ्लोर थेरेपी हो, मसाज थेरेपी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, रेड लाइट थेरेपी एंड फंक्शनल न्यूट्रिशन, एंड आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, द फैसिलिटी को चलाने वाले कर्ता धर्ता इज ऋषि। ऋषि इज अ सेल्फ इज हिमसेल्फ ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट हु हैज treated many of the cricket players that play for MLC, including Sachin Tendulkar, including many of the mainstream boxers and athletes. And if your parents complain about, you know, pain in their goddo mein bada dard hota hai, mundiya mit se to chala hi nahi ja raha, back meri akad gayi hai, oye, aur dil ka humaun karta na, agar dil mein kuch hota hai, halchal hoti hai, koi ghabrahat hoti hai, to bhaiya, exercise is one way to cure all of that. And believe me, exercise works wonders. The right nutrition with that just does so much better to your body that you can never even think of. TexasStarRehab.com is that place to be. TexasStarRehab.com is the website. Locations are in Irving and in Frisco. Before you take that next painkiller, please do me a favor. And no, let's not play holy. We'll play holy when holy comes. But do me a favor. Go to TexasStarRehab.com. Get the details and try it before you pick up that painkiller. Last track for me. Iske baad le raha hoon ji aapse ijazat. Rather, I'll just leave you with this track. Duaon mein mujhe yaad rakhiyega. Once again, prayer request from Mashrooq Khalid is coming from my heart and I'm sending it to yours. Please pray for him tonight while I leave you with this lovely track in the voice of Atif Aslam and Mahira Khan. Good night.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
5: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
4: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
5: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
4: इंडिया तक।
5: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्डवाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
6: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
7: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
6: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
8: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
9: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
8: Fikar not. We have the perfect solution.
10: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 11:30 a.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
11: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
12: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
13: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas.